है उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं, नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे, नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु भेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में विश्राम तो यही मिलेगा, के काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल है, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव, कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है, बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी, प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था, अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली, आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम
कवच में हो तो

रक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा न बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं हमको, शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता। एकदम महीन, फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली, अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो, तो का रंग बरस रहा है, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भेजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बु छुअत न मैलो होए। आहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे, जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे, बोले
मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में

भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघिनी का दूध है, वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य है, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़ है भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, ए मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है प्रभु, जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ?
बोले रूप मा

गुण गावे गोविंदा। हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया। भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मरण, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले, तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। ताजी तीरथ

साधु। यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है,

रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है। एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे।

आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताही लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआएं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे वो संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा, जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी आप, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरनते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या है, तो फिर आपकी तरफ उंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है। ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार

0: मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है। लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाए। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हा लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उनका कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी ऐसे बोले, बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया, हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मार।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रही। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं, एक विजुअल

0: आत्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें. इट्स यू ओनली डूइंग दिस. भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए. तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है.
1: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें. और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा. 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके.

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का, तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया, गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच, इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
1: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसा चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मीन्स जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
2: नहीं,
1: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक का आप थैंक्स करें। कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये पहले से भले 1% ही सही लेकिन वो सुधरने लगेगा क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
0: कई बार जब मैं आपको सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर मैं ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। और कैसा रहा आपका वीकेंड, पहले तो ये बताइए। और आई नो जब वीकेंड खत्म होता है ना तो मन बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि फिर से वही ऑफिस वाला लूप स्टार्ट हो जाता है। और मंडे वाले दिन ना स्पेशली मंडे ब्लूज फील होते हैं। तो भाई डोंट वरी, अंजलि है ना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि, और शो लेकर आ गई हूँ अंजलि ऑन एयर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तो देखिए भाई, मंडे वाला दिन है, और अगर आज के दिन को ना ऐसे मूड चढ़ाकर काम करेंगे ना तो वैसे ही मजा नहीं आने वाला, बिकॉज वीक की स्टार्टिंग आज के दिन से होती है। तो बेटर है कि आज के दिन को आज एक प्यारे से स्माइल के साथ शुरू करते हैं, और देखिए चुटकी बजाते ही ना फिर से वीकेंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मंडे आ गया है, वीक स्टार्ट हुआ है, तो इस वीक को ना नई एनर्जी, नई वाइब, नई मस्ती, नए एंटरटेनमेंट के साथ शुरू करेंगे। आज बहुत सारी अपडेट्स लेकर आ गई हूं मैं, बहुत कुछ है आज मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको इंतजार। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: एक छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। देखिए यार, हाल चाल बेहतर है, लेकिन इस बेहतर हाल चाल को मैं और भी बेहतरीन बनाने के लिए आ गई हूँ। बातें बहुत सारी करने वाली हूँ, बहुत सारी चीजों के साथ आई हूँ आज। लेकिन सबसे पहले ना बात कर लेते हैं आज के वेदर की। तो मौसम क्या कहता है? तो देखिए, अगर मैं मौसम की बात करूँ, वेदर की बात करूँ, हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 34 डिग्री और मिनिमम रहने वाले 25 डिग्री। विंड स्पीड आपको 5 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 67%। और इसी के साथ यार आज बिना धूप वाला मौसम, यानी कि सनी सनी रहने वाला है पूरा दिन। अच्छी खासी धूप है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है इन दिनों। तो आपको पता है ना क्या करना है भाई, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं थोड़े ही देर में।

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गए। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इलीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्ट ना हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिए, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया एक बार आपको वो भी बता देती हूँ, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। तो भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें एक पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से वो अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना, ना मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है, और लव योर सेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक जो है खास आपके लिए।

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडेज, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारे स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने का, तो एक बार रुक कर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए है या बाहर वालों के लिए है। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आज मैं एक चीज सोच कर देखेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए रील से ब्रेक लिया जाए तो क्या होगा। मैं बताती हूँ ना क्या होगा। ना तो सुबह उठते ही स्क्रोलिंग होगी, ना ही एक आखिरी रील वाला झूठ होगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर ना एक मैं स्टडी लेकर आई हूँ, तो स्टडी में ना एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों का ब्रेक लेने पर ना आपको मिल सकता है ज्यादा टाइम, बेहतर मेंटल क्लैरिटी, मूड में सुधार और सेल्फ स्टीम में बूस्ट। तो देखिए भाई, बात तो फायदे की है यार, क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं ना, एक तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, डेटा तो छोड़ दो यार, डेटा तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपको पता है हमारा फोन भी इफेक्ट होता है, हमारी फोन की बैटरी भी खराब होती है। ये तो चलो दो ऐसी ऐसी बातें थी कि ठीक है, जिनका हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया? हम अपनी स्क्रीन को सिर्फ स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम किसी रील को पूरा खत्म होने तक कभी इंतजार नहीं करते। अब आप सोचे कि हमारा फोकस्ड करने का जो तरीका है वो कितना खराब हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग कितना खराब हो गया, और हमने अपने माइंड पर कंट्रोल भी खो दिया। हम जो वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं, हमें लगता है वही सच्चाई, जिसकी वजह से हम इतना स्ट्रेस भी ले लेता है कि यार सब घूम रहे हैं, सबकी अच्छी जॉब हो रही है, सब अच्छा पैकेज ले रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। ये चीजें ना कंपैरिजन को भी लेकर आती है। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया डिजिटल डिटॉक्स करने का खुद को। और स्टडी में ना ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने वालों ने ना स्ट्रेस घटने, ओवरऑल वेलबींग बेहतर होने जैसे फायदे भी देखे हैं। तो शायद 7 दिन रील से दूरी, बोरियत नहीं ब्रेन की छुट्टी हो सकती है, और साथ ही आपको मिल सकता है एक बढ़िया रीस्टार्ट, एक किकस्टार्ट, जिससे ना आप नई चीजें अपने दिमाग में लेकर आ सको। इस बार आपने करना क्या है, इस बार ना आपने एक हफ्ते का चैलेंज लेना है खुद से, कोई रील नहीं देखनी है, कोई रील बनानी भी नहीं है, पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करना है खुद को, और फिर देखिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है। और फटाफट से यार मैं तो चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा काम भी है मेरे पास। आपका यह अभी भी बैठकर रील देख रहे हो ना, देखते रहो। और इसी के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी वक्त हो गया है इस म्यूजिक ब्रेक का।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे आपको

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गया। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इलीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्ट ना हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिया, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया एक बार आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। तो भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें एक पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से वो अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना ना, मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है और लव योर सेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को और इसी के साथ इंजॉय करो। ये ट्रैक जो है खास आपके लिए,

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडे, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारी स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने का, तो एक बार रुक कर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए है या बाहर वालों के लिए है। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

हेलो हेलो जी। तो आज की फील गुड स्टोरी मैं लेकर आ गई, और आज की स्टोरी ने ना सच में मेरा दिल जीत लिया यार। एक आवाज, ब्रो जूते लेगा, और बस ये जो सेंटेंस है ना, इसने किसी का दिन बना दिया। तो देखिए, कभी कभी किसी का पूरा दिन बनाने के लिए ना बस एक छोटा सा जेस्चर काफी होता है। ये बताने वाली है हमें आज की स्टोरी। तो भाई, सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर अमन शर्मा ने ना एक डिलीवरी पार्टनर को देखा जो कि अपने चप्पले पहनकर डिलीवरी करने के लिए आए थे। तभी अमन ने ना अपने ब्रांडेड शूज निकालकर उन्हें ऑफर कर दिए कि ब्रो जूते लेगा, और बस ये जेस्चर। इतना ही काफी होता है किसी का दिन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये डिलीवरी पार्टनर है ना, पहले इसने शूज लेने से मना कर दिया, लेकिन अमन ने इंसिस्ट किया और कहा कि भाई देखो, ये यूज्ड नहीं है, ये मेरे न्यू ब्रांडेड शूज हैं, तो मैं एकदम न्यू चीज तुम्हें दे रहा हूँ। अमन के इतना फोर्स करने के बाद ना, तब जाकर डिलीवरी पार्टनर ने हाँ किया। इसलिए कहते हैं कि आपकी छोटी सी काइंडनेस ना किसी का पूरा दिन बना सकती है। तो अपने अंदर ही काइंडनेस जरूर रखेगा। लव केयर एम्पैथी के साथ ना हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हेलो हेलो जी, हैं जी, क्या हाल चाल है बड़ी बात। देखिए यार, हाल चाल बहुत बेहतर है आई नो, और बेहतरीन करने के लिए ही तो मैं आई हूँ। और ना आज मैं एक वायरल स्टोरी लेकर आ गई हूँ। अगर मैं बात करूँ ना आई लव यू की, तो आजकल के टाइम पर ना आई लव यू कहना बहुत इजी हो गया है। करना ही है, एक मैसेज टाइप करना है, एक इमोजी भेजना और बस प्यार का इजहार हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना उस दौर की, उस जमाने की, तो एक बार इमेजिन कीजिएगा 1964 में किसी ने अपनी वाइफ के लिए 8 फीट लंबा हैंड रिटन लव लेटर लिखा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ना ये पुराना लव लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस लव लेटर की फोटो आई, फिर वीडियो आई, और जब वीडियो सामने आई ना लोग पागल हो पाए। और बताए खास बात क्या है? खास बात सिर्फ ये नहीं कि ये लेटर 8 फीट लंबा है, बल्कि खास बात ये है कि सोच के जरा देखिएगा कि इसे लिखने में कितना टाइम लगा होगा, कितना पेशेंस, कितने इमोशंस लगे होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द वायरल पोस्ट, ये कपल 62 साल से शादी शुदा है, यानी कि इन्होंने ना एक दूसरे को अपने 62 साल दिए। अब सोचिए कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को माफ किया होगा, कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया होगा, और इसी तरह करते करते ना आज ये शादी यहाँ तक पहुँची है। और अगर आज प्यार की बात करें ना, तो प्यार सिर्फ डीएम तक रह गया, व्हाट्सएप मैसेजेस तक रह गया। और अगर ज्यादा प्यार किसी को एक्सप्रेस करना हो तो ज्यादा से ज्यादा कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर कर देते हैं बस। लेकिन अगर देखी जाए ना, प्यार की असली वैल्यू ना उन शब्दों में नहीं है जो आप लिखते हो, बल्कि उस पेशेंस में जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस टाइम में है जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस एफर्ट्स में है जो आपने किसी के लिए किया होता है। तो आज मैं कहानी इसलिए लेकर आई थी, अपने प्यार को ना थोड़ा सा और एफर्ट्स दे करना स्पेशल बना दो। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, टाइकवांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

यार आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, अभी मेरे पंखे को कुछ हो गया यार। अभी नया लगवाया था और फिर मैं अगर पापा को बोलूंगी ना पापा यार मेरा पंखा चेंज करवा दो, उन्होंने यही कहना है कि बेटा तेरे रूम का पंखा ही इतना धीरे क्यों चलने लगता है। तो भाई देखिए अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही है ना तो आज मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आई हूँ। अब आप बोले यार अंजलि इतना इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना, तो भाई बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना। अगर आपके घर का ही पंखा अचानक से स्लो हो गया ना तो नया लेने की बजाय ना ये जरूर सुनकर जाइएगा। गर्मियों में ना अक्सर ऐसा होता है कि फैन की स्पीड कम हो जाती है, तो करना क्या है आपने, सबसे पहले ना नया पंखा लेने से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो फैन में ना हो करना किसी छोटी सी चीज में हो। ये मैंने आज सोचा और तभी मैंने इस पर रिसर्च किया और आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज पंखे को ठीक करने का जुगाड़। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्लेड से या फिर जो मोटर है ना उसके डस्ट को क्लीन कराना है, एंड फिर देखिएगा जो बाद में कैपेसिटर है ना, रेगुलेटर और जितनी भी वायरिंग है ना उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि आपके फैन की मोटर बार बार गर्म हो रही है जल्दी और हवा नहीं आ रही, फिर आपको खुद से नहीं करना कुछ भी, फिर ना आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। यानी कहने का मतलब ये था कि पहले खुद से कोशिश करो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, नया पंखा मत खरीदना। बिकॉज होता क्या है ना गर्मियों में यूजुअली यही प्रॉब्लम आती है पंखों में और जिसकी वजह से ना हम फटाफट से दुकान पर चले जाते हैं खर्चा करने के लिए। तो देखिए ये ना आज का बिजनेस मंत्र भी है, अगर आपको भी लगता है ना कि ऐसे थोड़ा बहुत पंखा साफ करके आप पैसा कमा सकते हो तो यार आप कर सकते हो, ये चीज ट्राई जरूर कीजिएगा और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए, ट्राई मिलता है थोड़ी देर में।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें अपना, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एन एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

का करोड़पति तो पता नहीं, लेकिन कौन कर रहा है स्कैम ये जरूर पता लगाना है। अब मार्केट में ना एक और स्कैम आ गया, और ये स्कैम आया है कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अब एक बार सोच के जरूर देखेगा कि आपको फेसबुक पर ना एक गेम दिखाई दे किस चेहरे को पहचाने, और अगर आपने ये चेहरा पहचाना ना तो आपको 8.5 लाख रुपीज का प्राइज मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई आपको एक चेहरा पहचानने का इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा, और अगर दे भी देता है तो आप इतने लकी कैसे हो सकते हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक 54 ईयर ओल्ड मैन ना इसी तरह से फेक केबीसी गेम की ट्रैप में फंस गया। और हुआ क्या, सबसे पहले स्कैमर ने प्राइस रिलीज करने के नाम पर ना इनसे लगभग 2000 रुपए ले लिए, और फिर इसी तरह से अलग अलग टैक्स इनसे मांगा गया, और इन्हें पता भी नहीं चला, इन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ, इनके बैंक से 1.5 करोड़ ट्रांसफर कर लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखे। किसी भी लॉटरी, किसी भी प्राइस के लालच में मत आइए, किसी के साथ भी अपना KYC, OTP एंड पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, खासकर किसी लालच के चलते। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी जेन्युइन प्राइस लेने के लिए ना बार बार टैक्स नहीं मांगेगा आपसे। और साथ ही एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, सेलिब्रिटी या फिर RBI के नाम पर जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं ना, उन पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड से बचिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको करना क्या है, 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करानी है। इसके साथ ही आप cybercrime.government.in पर भी जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं थोड़ी देर में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

दिल्ली दिल्ली है दीवानों की दिल्ली। देखिए भाई, दिल्ली दीवानों वाली तो है, लेकिन दिल्ली ना थोड़े से नई ट्रेंड वाली भी है। अब यार, कभी सोचा था कि किसी की बाइक चोरी हो जाएगी और चोरी होने के बाद ना आपको व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेज दिया जाएगा? तो भाई देखिए, दिल्ली के नारायणा एरिया से ना KTM स्पोर्ट्स बाइक चोरी हो गई और ऑनर हर्षित जो है उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन FIR के बाद ना उनके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, बाइक मेरे पास है, 10,000 दो, वापस ले लो अपनी बाइक। तो भाई यहाँ पर ना पैसे मांगने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामने वाले ने QR कोड भी भेज दिया, कहा कि पहले 5,000 एडवांस भेजो, फिर बाइक की लोकेशन और वीडियो शेयर करूंगा, एंड उसके बाद ना 5,000 और देकर अपनी बाइक ले जाना। लेकिन हर्षित ने ना यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट मूव खेला, ऑनलाइन पेमेंट करने के बजाय ना कैश में डील करने को कहा और कहा कि ठीक है मैं तुम्हें कैश दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ना मेरे सामने आना होगा कैश लेने के लिए, अगर तुम रेडी हो तो भाई बता दो, मैं अभी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर अब हर्षित ने क्या किया, हर्षित ने ना पुलिस साइबर सेल की हेल्प से मोबाइल नंबर और QR कोड से जुड़े जितने भी बैंक अकाउंट थे ना उनकी जांच की, पुलिस ने वेरीफाई किया मैसेज भेजने वाले एक्चुअल बाइक थेफ्ट में इन्वॉल्व है या फिर किसी ने थेफ्ट की इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर अलग से फ्रॉड करने की कोशिश किया, ये सारी चीजों का पता लगाया पुलिस ने और उसके बाद ना NVO से पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक अलग तरीके से अवेयर करने आई हूँ, हो सकता है कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो जाए, लेकिन उस फ्रॉड में फंसने के बजाय ना आप ट्राई करना कि हेल्प ले लो। अब वो हेल्प आपको किसकी लेनी है, अपने पड़ोसियों की नहीं लेनी, यार पड़ोसी ना अक्सर फंसा देता है, आपको हेल्प लेनी है पुलिस की। पुलिस के पास जाना है, सारी डिटेल्स देनी है, एंड फिर देखिएगा जो भी आपके साथ स्कैम हुआ ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सो याद रखिए, अगर चोरी के बाद कोई भी आपको QR कोड भेजता है ना तो कभी भी पेमेंट मत कीजिएगा। बी अवेयर, बी अपडेटेड, और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: हेलो हेलो फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद में ना इस बार डांडिया की धूम हर जगह नजर आने वाली है। नवरात्रों की जो वाइब है ना वो पहले से ही नजर आ रही है फरीदाबाद में। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड इवेंट के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ स्टूडियो में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो ब्यूटीफुल लेडीज, रजनी जी एंड शमी जी। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जलसा के बारे में। यार देखो, नवरात्रि की बात और जलसा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जलसा वैसे ही खास है क्योंकि जलसा 5.0 लेकर आ गए हैं रजनी जी एंड शमी जी। सो पहले ना मैं आपसे ये जानने वाली हूँ, जलसा 5.0 का नाम सुनते एक सेलिब्रेशन और टुगेदरनेस का फील आता है। इस बार जलसा का सेंट्रल आइडिया क्या है और साथ ही आपने इस इवेंट के थॉट को किस तरह से क्रिएट किया ये जरूर बताइए हमारे लिसनर्स को।
1: हाई, आई एम रजनी वर्मा फ्रॉम ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब। तो जब जलसा की बात होती है तो जलसा का नाम ही है जलसा 5.0, तो इससे आपको पता चलता है कि ये हमारा 5th ईयर है। सो सेंटर आइडिया हमेशा से यही रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करे जहाँ पे हर सोसाइटी के लोग आके उसको चाहे वो एग्जीबिशन हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो मस्ती हो, वो एक प्लेटफॉर्म में वो लोग उसको सेलिब्रेट करें। सो हमारा ये जो इवेंट है वो होने वाला है गोपाल वाटिका सेक्टर 88 में, शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे होगा हमारा ओपन डांडिया डांस कंपटीशन जो कि अलग अलग सोसाइटी की लेडीज आके यहाँ पे परफॉर्म करती हैं, जो प्री रजिस्टर ग्रुप्स होते हैं प्लस डांस अकेडमीज होती हैं, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल एग्जीबिशन होता है। तो आप यहाँ पे डांस भी कर सकते हैं, मस्ती भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ दिवाली और करवा चौथ की शॉपिंग भी कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच मैम। और बात ना जलसा के बारे में बहुत सारी करने वाला है, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद अब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

0: हेलो हेलो जी, तो फरीदाबाद बिग बॉस फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें, और बातें ना आज अकेली नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रजनी जी एंड शमी जी, जहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ जलसा के बारे में। जलसा 5.0 होने जा रहा है फरीदाबाद में 11th अक्टूबर को। सो अगर मैं बात करूँ ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब, वुमेन एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए काम करता है। जलसा 5.0 में आपको क्या लगता है कि वुमेन को कनेक्ट करने और सेलिब्रेट करने का सबसे ब्यूटीफुल एलिमेंट क्या है?
1: हाय, आई एम शमी भला। देखिए, जलसा का नाम ही एक सेलिब्रेशन है और औरतों के इर्द गिर्द ये सेलिब्रेशन रहता है, क्योंकि इसमें सारी लेडीज जो है हमारे यहाँ पे स्टॉल्स जो लग रहे हैं वो सारे वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टॉल्स जो उन लेडीज ने लगाने हैं जो कि एक घर से एक छोटा बिजनेस करती हैं, जिनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें उनके कस्टमर्स और बने, उनके प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी हो और आगे उनको बिजनेस मिले। तो हमारे क्लब मेन एम ही यही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, और इस बार हमारे यहाँ जलसा के अंदर आपको ऑलमोस्ट 30+ आपको स्टॉल्स मिलेंगे, और जिसमें आप अपने दिवाली की, करवा चौथ की, इन सब की शॉपिंग्स कर सकते हैं। प्लस आपको वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप आए, अपने फैमिली के साथ आए, और साथ में आपको मस्ती, खाना, शॉपिंग, सब चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि आप एक शाम हमारे साथ जलसा के नाम कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए कहूंगी कि आप लोग सभी आइए और प्लीज हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाइए।
0: अब तक सिर्फ मैंने जलसा की बात की थी, डांडिया की बात की थी, लेकिन अब ना ये भी पता चला है कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग किस तरह से खास होने वाली है जलसा में। तो अगर आप वेट कर रहे हैं ना, अगर अभी तक कोई प्लान नहीं किया है तो जरूर आइएगा 11th अक्टूबर जलसा 5.0 में। और इसी के साथ ना बहुत सारी बातें अभी करने के लिए, लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है थोड़ी देर में।

0: Doctor calling.
1: Hi, I am Dr. Nitish Diwan. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आर्जेंटली। और आज मैं लेकर आ गई हूँ नवरात्रि वाली धूम, मतलब कि नवरात्रि वाली वाइब में आई हूँ आज मैं, बिकॉज आज बात कर रहे हैं जलसा के बारे में, जलसा 5.0। सो रजनी जी ये बताइए एंड शमी जी ये बताइए, अगर जलसा 5.0 की मैं बात करूँ पिछले एडिशन से, किस सेंस में डिफरेंट या स्पेशल होने वाला है इस बार, और साथ ही ऑर्गेनाइजर्स ने ऑडियंस के लिए क्या कुछ नया सोचा है?
1: सो अगर डिफरेंट की बात करूं तो हमारा कंसेप्ट सेम ही रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलसा में हमारे ओपन डांडिया कंपटीशन होता है, जहां पे हमारे ऑलमोस्ट हर सोसाइटी के लेडीज आके परफॉर्म करती हैं। उसी के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल एग्जीबिशन होता है, जैसा कि अभी शमी जी ने बताया कि हम वेमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का ऑलमोस्ट 3,000 से 4,000 लोगों के सामने। और इस बार की अगर मैं बात करूं तो हमारे स्पॉन्सर हैं जनता प्रीमियम स्वीट, और वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका, हमारे रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी, हेल्थ पार्टनर है अमृता, एजुकेशन पार्टनर है हमारे कुंदन ग्लोबल स्कूल, डांस पार्टनर है द ग्रूव लैब, और गिफ्टिंग पार्टनर है हमारे सिमोना क्रिएशन। सो इतने लोग जब मिलके एक इवेंट करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक नई अपॉर्चुनिटीज होती है, बाकी लोगों के लिए नई कोलैबोरेशन का टाइम है। तो बिल्कुल आप आइए इस इवेंट में, डांस मस्ती के साथ साथ बहुत सारी कोलैबोरेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ओपन है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अमृता हमारे हेल्थ पार्टनर है, वो आपको यहाँ पे हमारे जलसा में आपको कूपन देंगे, जिसमें आप 3,000 की जो मेमोग्राफी है वो सिर्फ 1,000 में ले सकते हो। तो यहाँ सेलिब्रेशन के साथ साथ वेमेन की हेल्थ का भी ध्यान हम रख रहे हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज हम उनको दे रहे हैं।
0: सो फरीदाबाद यहाँ ना आपको सिर्फ डांडिया नहीं मिलने वाला, यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप शॉपिंग कर सकते हो यार यहाँ से जितनी चाहे उतनी, डांस कर सकते हो, अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो यार, सब कुछ मिलेगा आपको, म्यूजिक, फूड, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। और पता है एक और खास चीज क्या है, यहाँ पर आपको मिलने वाली रेडियो महारानी की टीम, यानी कि मैं भी आपको यहीं पर मिलूंगी डांडिया करते हुए। तो भाई वेट मत कीजिएगा, जरूर आइएगा, मिलते हैं 11th October जलसा में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: और बहुत सारी बातें आज हमने जलसा के बारे में की, बहुत कुछ जाना कि क्या कुछ खास है, लेकिन लास्ट में ना मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आप रेडियो महारानी के लिसनर्स को पर्सनली इनवाइट करना चाहें तो 11th अक्टूबर को जलसा 5.0 का पार्ट बनने की सबसे स्पेशल वजह क्या होगी?
1: सो स्पेशल वजह की मैं पहले बात बता देती हूँ कि ये फ्री एंट्री है बिल्कुल, कोई भी हम पासेस कोई भी एंट्री हम नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड, चाहे वो बच्चे हो चाहे अपने माँ बाप हो, आप उनके साथ यहाँ पे आ सकते हैं, इवेंट को एंजॉय कीजिए, हमारे लाइफस्टाइल एग्जीबिशन से शॉपिंग कीजिए, फूड स्टॉल लगे हैं अलग अलग तरह के, आप उनको एंजॉय कीजिए और बहुत सारी मस्ती है आप लोगों की के लिए। तो जलसा की अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो जलसा होने वाला है गोपाल वाटिका सेक्टर 88 में, शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा।
2: हाँ, तो हमें आपका इंतजार रहेगा, इस बार जलसा को और धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि आप अगले साल हमारे इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं जलसा में। थैंक यू।
0: सो माय डियर लिसनर्स, अगर अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है और सोच रहे थे यार कि क्या किया जाए ये नवरात्रि, तो जलसा 5.2 मत मिस कीजिएगा। बहुत ही एक्साइटिंग इवनिंग होने वाली है जहाँ पर आपको डांडिया भी मिलने वाला है, फूड भी मिलने वाला है, और आपको पता है यहाँ पर आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें मिलने वाली है शॉपिंग करने के लिए। और एक और चीज यहाँ आपको मिलने वाली है, आरजे अंजलि और आरजे गौरव भी जो आपको डांडिया करते हुए नजर आएंगे। आपको ना बहुत सारी चीजें मिलने वाली है जलसा 5.0 में, तो इसका पार्ट बनना मत भूलेगा। और साथ ही एंजॉय कीजिए आज का दिन, ये ट्रैक, और मिलती हूँ मैं कल, बिकॉज अब मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आज आऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आज का जो कोट है ना, जिससे हम शुरुआत करने वाले, वो हमारे आज गेस्ट का एक मिनी इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और कोट सुनिए। एक नारी जब खुद के लिए खड़ी होती है तो अनजाने में हजारों महिलाओं के लिए रास्ता बना देती है। तो ये जो लाइन है ना कि एक नारी जब खुद के लिए तैयार हो जाती है, वो सोचती है नहीं मुझे ये करना है, तो उसे देख के पीछे 10 और महिलाएं मोटिवेट होके आती हैं उस पाथ में, उनको देख के 10 और, ऐसे एक जो ह्यूमन चेन बेसिकली वुमेन्स की बन जाती है, जो मोटिवेशनल बेस पे बस चल रही होती है और लोगों को इंस्पायर करती जाती है कि वो कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, हमें भी करना चाहिए लाइफ में कुछ ऐसा। तो वो सिर्फ एक नारी शक्ति के साथ होता है, क्योंकि जब मेंस की हम बात करते हैं और मेंस सामने वाले को देखता है तो कहता है नहीं, इससे तो या तो मैं अच्छा करूंगा या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो वो जेलसी आ जाती है। बट वुमेन नहीं, वुमेन हर बार वो कॉम्पिटिट लेवल पे आती है कि नहीं इसने ये किया है तो मैं इससे एक स्टेप ऊपर ही दिखाऊंगी, फिर दूसरी वाली कहती मैं इससे ऊपर। तो ये कंपैरिजन में जो ऊपर जाने की चेन है ना, ये वुमेन्स में ज्यादा स्ट्रांग होती है ये मेन के कंपैरिजन। ये एक साइंटिफिक पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी कोट लिखा गया है। बट हमारी आज की गेस्ट ने भी ऐसा ही कुछ करा था, वो अकेले चलना शुरू करी थी बट उनके साथ लाखों महिलाएं जुड़ चुकी हैं, क्योंकि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वो गेस्ट आज हमारे साथ होंगी महारानी स्टूडियोज में, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी। कुछ हटके

0: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेट्स एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

वुमेन्स इन स्पॉटलाइट में इनके अलावा आज कोई जगह ले ही नहीं सकता। इन्होंने जो करके दिखाया है शायद इसका इंतजार पूरी इंडिया कर रही थी एक तरफ से। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन्स एशिया कप का ये मैच, और क्या करा है पाकिस्तान वालों ने। मतलब आप हारते ये कोई बात नहीं, बट ऐसे हारोगे। इंडियन वुमेन्स टीम ने जो कमाल करके दिखा दिया है कि भाई इन्होंने पूरे पूरे 10 विकेट उनके उड़ा दिए, और वो भी बहुत कम रन दिए उनको। बहुत कम क्या, ये अभी तक का मेरे को लग रहा है एशिया कप का या वुमेन्स का किसी भी मैच का सबसे लोवेस्ट होगा। 55 रन पे पूरी टीम को आपने आउट कर दिया। क्या था ये फीमेल्स इन ब्लू, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये किस तरह का मैजिक आप आज पिच में लेके आए थे, या किस तरह से आपने वहां पर जलवा जो है वो बिखेरा था। मैं बॉलिंग की बात करूंगा तो हर एक बॉलर आप लेवल पे जाके खेल रहा था। अब बैटिंग के लिए तो आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड हो चुका था कि आप क्या ही बोलोगे, जब आपने सामने वाले को 55 पे ही आउट करके रख दिया है। तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर वो निकल के आया था। और जहां पर 27 रन तक तो इनकी पारी बहुत बढ़िया चल रही थी, आउट आउट नहीं हो रहे थे, बट 27 रन से लेके वो 55 रन के बीच में ऐसा क्या हुआ, वो बीच के 28 रन में आपने ऐसा क्या उलटफेर कर दिया कि पूरी टीम ही धैर्य पैर आउट कर दिया आपने। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है जितनी भी बाकी टीमें हैं उन्हें फीमेल्स इन ब्लू से थोड़ा सा सतर्क होके खेलने की भाई तैयारी कर लेनी चाहिए। ये पूरी फॉर्म के साथ आई, और कब चुटकियों में आपका खेल खत्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है यार, ये होता है एक प्राउड इंडियन वाली फीलिंग जो इस टाइम हम सबको हो रही है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले, जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलेज।

ये लाइन तो हम अक्सर कहते हैं ना, शी हैव चेंज द वर्ल्ड, बट आज मैं जिसकी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, शी हैव मेक द वर्ल्ड। उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया, वरना शायद एडुकेशन को इतना बड़ा एक जो मैं कहता हूँ ना गैप या लैप जो था इतने टाइम तक, वो हमेशा रहता, वो कभी हम कवर कर ही नहीं पाते अगर सावित्री बाई फूले ना होती। हाँ जी, मैं आज उन्हीं की कहानी के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और सावित्री बाई फूले, ये नाम हम लोग ने अक्सर सुना होगा, बट उनकी कहानी के पीछे का जो संघर्ष है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। एक टाइम था जब लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था, और उस टाइम पे सावित्री बाई फूले ने डिसाइड किया था कि भारत में पहला गर्ल्स स्कूल वो शुरू करेंगी 1848 में, जहां पर लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए बिल्कुल इंस्पायर नहीं करते थे, मोटिवेट नहीं करते थे। इन्होंने कहा नहीं, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी भी और उन्हें उनके वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलना भी सिखाऊंगी। जब वो स्कूल जाती थी तो उनपे पत्थर फेंके जाते थे, उनपे कीचड़ फेंका जाता था, उनको तमाम बातें बोली जाती थी, और सावित्री बाई शांति से एक एक्स्ट्रा साड़ी अपने बैग में रख के लेके जाती थी और वहां जाके चेंज करती थी, और उसके बाद हिम्मत से लोगों को मोटिवेशन देती थी, शिक्षा देती थी कि नहीं, हमें ये समाज को बदलना है, समाज की सोच को बदलना है। और आज जब लाखों लड़कियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में सक्सीड कर रही हैं, तो हमें सावित्री बाई फूले के उस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए जहां से उन्होंने वो पहला कदम उठाया था, जिस वजह से आज इतनी लड़कियां पढ़ पा रही हैं, अपने लिए कुछ करियर में कर पा रही हैं। तो उन सब के लिए सावित्री बाई फूले जो हैं वो एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए, वहां से उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमेशा उनके बारे में लोगों को और ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

इस घर में जाते ही लोगों के अंदर ऐसे चेंज आ जाते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करो कि ये भी ऐसा कर सकता है क्या। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और कल से शुरुआत हुई है बिग बॉस की। और बिग बॉस की शुरुआत होते ही घर के अंदर एंटर हुए हैं बहुत सारे गेस्ट, और आते ही कलेश शुरू। सोने के लिए कलेश हो रहा, भाई कि ये बेड मेरा है, ये बेड मेरा है, मुझे ये बेड चाहिए, वो बेड चाहिए। और भाई तुम मैरी कॉम से लड़ रहे हो, भाई वो कह रही है मैं लेजेंड हूं, मुझे ये बेड चाहिए। अरे वहां आप क्या, वहां आप कॉमन कंटेस्टेंट बन के गई, वो भी वही लेवल पे आया, वहां वो लेजेंडरी क्यों देखेगा कि आप लेजेंड है तो आपको बेड दे दे, आपको वो दे दे, सीनियर आप सीनियर सिटीजन अलग कार्ड के लिए। तो आपको नहीं जाना चाहिए था, अगर आपको ये सब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भाई वो कॉम्पिटिटर है, वो भी अपने लिए लड़ेगा कि मुझे ये बेड चाहिए, मेरे ये 10 रीजन है, आपके ये 10 रीजन है। तो वो कह रहा है मैं अगर किसी के साथ सोया तो वो नहीं सो पाएगा, उसके अपने अलग रीजन चल रहे हैं। बट मैरी कॉम ने जाते ही नहीं नहीं ये सिंगल वाला बेड ही लूंगी मैं, बिल्कुल भौकाल के साथ वहां पर बोलना शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं समझा रहे हैं उनको, कह रही नहीं मैं लेजेंड हूं। अरे आप लेजेंड हैं, हम सब मान रहे, पूरा इंडिया मान रहे, बट उस घर के अंदर नहीं। उस घर के अंदर आपको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग वहां पर चीजें जीतनी है। आप बाहर जो करके आए उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर नहीं जीतना है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आप सब एक लेवल पे, आप सबको कॉम्पिटिट करना है। अब वहां पर भी अगर कोई ये देखने लगे नहीं ये लेजेंड है और हम इनको ये नहीं करेंगे, इनको हम खाना बना के देंगे, तो वहां आपका जाने का फायदा क्या? वहां आपको सर्वाइवल ही तो करना है ऐसे लोगों के बीच में जो आपके इक्वल हो चुके हैं। आप तो एक ये थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है घर के अंदर अब हमको। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज के बीच में जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत मजा आने वाला है, तो उनके लिए सीजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वुमेन्स राइट की जो बात है ना, वो आज आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा आर्टिकल क्या वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब भी आप किसी भी लॉफुल चीज के सामने जाएंगे तो मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मेल है उसे ज्यादा समझा जाएगा या सुना जाएगा, इक्वल वहां पर दोनों जन होने चाहिए लॉ के सामने, कोई भी लॉ वाली चीज के सामने आप जा रहे हैं। आर्टिकल 15 बताता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीजों को लेके, कि ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगा, ये सिर्फ मेल को मिलेगा। हर अधिकार दोनों को मिलना चाहिए, जेंडर वाइज डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, आज के टाइम में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है उतनी ही फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, पर हो सकता है फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो वुमेन एम्पावरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, बट इक्वल राइट्स दोनों के लिए होने चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 16। और इसी आर्टिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इक्वल पे, इक्वल वर्क स्पेस, वहां पर इक्वल तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी उस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर डॉटर को अपने जो घर, जो इनलॉस का घर है वहां भी, और जो उसका रियल घर है मम्मी पापा वाला, वहां भी इक्वल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पूरी तरह से एक महिला को सशक्त बनाते हैं कि नहीं, अगर वो सोचे कि मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा है, एडुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है मुझे, तो ये उसका राइट है कि वो घर पे बोले कि अगर बेटा पढ़ने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, उसे ये मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप इसमें फायदा उठाने लगे कि आपको एक मिला है तो आप कह दो नहीं मुझे दो चाहिए, मुझे तीन चाहिए, मुझे चार चाहिए। इक्वल मींस इक्वल, फिर वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एक को अबव या किसी भी एक को नीचे हमें नहीं रखना है। ये आर्टिकल्स हमको समझाते हैं, और वुमेन्स को भी अपनी राइट समझ के और उनके बारे में समझ के ही करना चाहिए, उन राइट्स का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है लाओ मैं ये बोल देती हूँ ये कर लेती हूँ। नहीं, जहां नीड है, जहां आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, सिर्फ वहां उन राइट्स का यूज करिए, हर जगह पे विक्टिम कार्ड वाली तरह से उन्हें प्ले करना ना शुरू करिए, वो बाकी वुमेन्स के लिए फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: भर 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

आखिर एक मर्द को चाहिए क्या, क्या डिमांड होती है उनकी? देखिए उनकी डिमांड बहुत बड़ी नहीं होती। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अक्सर हमने सुना है ना, एक महिला को समाज में ये चाहिए, एक महिला को समाज में चाहिए, कभी हम बात ही नहीं करते एक पुरुष को समाज में क्या चाहिए। देखिए पुरुष को बहुत आसान चीजें चाहिए, गर्म खाना चाहिए, टीवी का रिमोट चाहिए और संडे को थोड़ी देर एक्स्ट्रा सोना चाहिए, शायद वो भी थोड़ी देर। लेकिन मैं आपको एक फन फैक्ट से हटके बताता हूँ, एक इंसान को क्या चाहिए, उसे चाहिए कोई उसको सुन ले, उस पे भरोसा कर ले, जब वो मेहनत कर रहा है ना तो उस मेहनत को कोई नोटिस करे और मुश्किल वक्त में उसका साथ दे दे, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और थोड़ी सी एप्रिसिएशन, बस इंसान वहां पर पिघल जाएगा। वो आपके लिए कुछ भी करेगा, वो आपको मूवी नाइट भी ले जाएगा, वो आपको डेट नाइट पे भी ले जाएगा, वो आपको डिनर कराने भी ले जाएगा, वो आपके लिए शॉपिंग भी कराएगा, बट वो जो चीज कर रहा है उसे आप धीरे धीरे अप्रिशिएट करते रहिए, उसकी उस चीज में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए, उसको सजेशन देना शुरू कर दीजिए। मेन से बेटर इंसान कोई आपके लिए फिर हो ही नहीं सकता, अगर आप इस तरह से उन्हें सपोर्ट करने लगेंगे। एक इंसान को हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कभी कभी उसको ये चाहिए कि वो जो बता रहे ना आप वो सुन लो और सुन के अपने तक रख लो, जाके आगे ना हो तो पता है आज इसने कोई, अपने तक सुनो, उसे वहीं खत्म करो। मेन से सिंपल और सॉर्टेड इंसान आपको और कोई नहीं मिल सकता। ये एज अ वुमेन का जो मसीहा होता है ना, मैं उनको ये धीरे धीरे टिप देता रहता हूँ ताकि वो अपने जो मेन हैं या अपने जो बेटर हाफ हैं उन्हें और बेटर तरीके से समझ सके। तो आज से ये कोशिश करिएगा, शायद आपको वो हल्की हैप्पीनेस जो है ना वो और इंक्रीज होती हुई नजर आए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

जितने भी फरीदाबाद वाले हैं, ये अपनी फिटनेस के लिए दौड़ने के लिए रेडी हैं कि नहीं है? अभी तक नहीं हुए? अरे मैं आपको बताता हूँ, आपको रेडी होना पड़ेगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन फिर से एक बार आ रहा है अपने 2026 के एडिशन के साथ, जहाँ देश भर के रनर जो हैं उनमें जोश और जज्बा फिर से उतना ही एंथुसियास्ट के साथ हमको देखने मिल रहा है। 27 सितंबर 2026 सूरज कुंड मेला ग्राउंड से होने वाली है ये मैराथन की शुरुआत, और अभी तक 1,00,000 से ज्यादा इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आप पीछे ना रह जाए, तो रजिस्टर अभी कर लीजिएगा। और इसके बारे में डीसी आयुष सिन्हा जी ने भी बताया है कि इवेंट का जो उद्देश्य है वो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, और नशा मुक्त हरियाणा का जो संदेश है वो पूरे हरियाणा तक पहुंचाना है, पूरे फरीदाबाद के लोगों तक पहुंचाना है। मैराथन में जो रेसेस होंगी वो होंगी 21.1 किलोमीटर की मैराथन होगी, 10 किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर की होगी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने वाली है। आपका टाइम जो है वो सब कुछ मेजर करा जाएगा, और कुल 10,00,000 रुपए का प्राइज मनी भी रखा गया है। तो इस प्राइज मनी के लिए ही दौड़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, अपने आप को अभी रजिस्टर करिए इनकी वेबसाइट पे जाके www.faridabadhalfmarathon.in पर। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए ये मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करिए, हो सकता है वो एक दिन आपकी रनिंग जर्नी को, आपकी हेल्थ की जर्नी को बिगिन करने में आपकी मदद जरूर करे। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।
1: માતાજી ને હમ કહીને કહું છું કે વાહ ફરે વાદળ ફરે ને વાયરો ફરે, પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે કે હાલો ને

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल लेते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियन इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था, तो लोग तब लगाते थे। फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

89.6 रेडियो महारानी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: ये कहावत है ना, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजर मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये जो कहावत है ना, ये हमारे आज के गेस्ट पे परफेक्ट सेट होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है आपके साथ। और आज हमारी जो नारी नंबर वन है वो है निधि सिद्धार्थ खुराना। और ये मैंने लाइन जो बोली है ये इन पे परफेक्ट सिट इसलिए हो रही है क्योंकि ये चली तो अकेले थी बट लोग इनके साथ इतना जुड़ गए हैं कि अब कारवां बहुत बड़ा हो चुका है। निधि, सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है। और ये 18 साल की जर्नी कॉरपोरेट लाइफ की और उसके बाद वो सब छोड़ गए, अपना एक नया पाथ को डिफाइन करना या एक नए पाथ को चूज करना, कितना हार्ड था या कितना इजी था?
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू तुषार। देखिए, 18 साल कॉर्पोरेट्स में, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जॉब करी। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय क्वालिफिकेशन एंड अलग अलग फील्ड्स में काम करने के बाद ये हुआ कि अपना सोचा नहीं था कि कुछ काम स्टार्ट होगा। शुरू से था कि अच्छे पढ़ी लिखी हूँ, पेरेंट्स ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है तो जॉब ही करते रहेंगे। बट कुछ पर्सनल ऐसी सिचुएशन हुई जैसे यूजली मदर्स के साथ होता है, सेकेंड बेबी होने पे आई थॉट अब छोड़ना पड़ेगा, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई किड्स एज वेल। फिर ये सिचुएशन आई कि मैं क्या करूँ, तो बैठे बैठे एक दिन आया दिमाग में, चार पांच औरतों से बात करें कि एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रमोटिंग ईच अदर बिकॉज वी आर सुपर टैलेंटेड, व्हाई टू स्टॉप एंड व्हाई टू यू नो जस्ट होल्ड आवरसेल्व्स बैक। सो ये जर्नी एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी की वहाँ से स्टार्ट हुई, चार औरतों को इकट्ठा करके जो शुरुआत करी, अब जो है 3 लाख से ऊपर महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
0: मेरे को लग रहा है आज की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहने वाली है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पायर किया है उनकी लाइफ में कुछ नया करने के लिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

0: मेरा ये जो सवाल है ना, इसका परफेक्ट जो एक एग्जांपल बोलूं या परफेक्ट जो मैसेज है वो हमारी आज की गेस्ट ही दे सकती है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ आज स्टूडियो में है निधि सिद्धार्थ खुराना। ये एंटरप्राइजिंग दीवास की ओनर भी हैं, फाउंडर भी हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ में बिजनेस शुरू तो करना चाहती हैं बट कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, कई बार गाइडेंस नहीं होता, इन सारी चीजों की कमी की वजह से वो नहीं कर पाती। तो एक कदम अगर वो आज आगे बढ़ाना चाह रही हैं तो उन्हें एज अ गाइडेंस पर्सन या एज अ मेंटर आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे पहली चीज होती है, हर औरत की एक अपनी कहानी होती है। डज नॉट मैटर आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने क्या करा है क्या नहीं करा है। वॉट मैटर्स इज योर करंट सिचुएशन, एंड आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर खुद विश्वास है कि मेरे को अपनी करंट सिचुएशन से आगे चल के कुछ काम करना है, वो डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं आपको पुल बैक करने के लिए, बहुत लोग बैठे हैं आपको पुश करने के लिए कि आप बढ़ें या आप पीछे रहें। ये आपने डिसाइड करना है, इट्स योर लाइफ। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई काम करना है तो चाहे छोटे स्टेप लेके करिए। कोई नहीं कह रहा लाखों की इन्वेस्टमेंट करिए, हजारों की करिए, करोड़ों की करिए, छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करिए। एंड इफ़ यू ट्रूली बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल अचीव दैट। कोई आपकी एक गाइडेंस दे सकता है, आपको पुश दे सकता है कि आप काम शुरू करें। एग्जाम्पल, जैसे मैं भी अगर किसी को मोटिवेट करती हूँ, मैं उनको खाली बता सकती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, करना उन्होंने खुद है। मैं ट्रेन की टिकट जो है किसी को पैसे दे के उनको ट्रेन की टिकट उनके हाथ में पकड़ा सकती हूँ, लेकिन वो ट्रेन का सफ़र उन्होंने खुद करना है, उनके बदले मैं नहीं कर सकती। सो आप अपने पे विश्वास रखिए एंड जो करना है करिए। सबकी सिचुएशन एंड ऑफ द डे इज सेम। ऑल ऑफ अस आर मदर्स, ऑल ऑफ अस आर वाइफ्स, ऑल ऑफ अस आर यू नो डॉटर्स, डॉटर इन लॉज। हमने सारी ड्यूटीज निभानी है, उसके साथ हमने काम भी करना है।
0: थैंक यू सो मच हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें इस तरह से मोटिवेट करने के लिए, इस तरह से अपनी बात रखने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ के ऐसे एंटरप्राइजिंग दीवा का पार्ट बन पाए या फिर अपना ही कुछ ऐसा कर दिखाएं जो शायद हमने कभी सोचा ना हो। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: ये जय माता जी ने हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे वादल फरे वायरो फरे, पण एक बार बोले पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हा।

0: 200 से ज्यादा इवेंट, 5000 से ज्यादा ऑनलाइन सेशन। भाई साहब हैट्स ऑफ वाली चीज है हमारी आज की गेस्ट के लिए। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और निधि, मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ, एंटरप्राइजिंग दीवा ने अपने 200 से ज्यादा फिजिकल इवेंट्स जो हैं वो कवर कर लिए, ऑनलाइन सेशन आप ले चुके हो, तो ये एक सक्सेस स्टोरी अगर आप मेरे को बताओगे कौन से वो बड़े इवेंट्स हैं या हम इसे कैसे मैनेज कर रहे हैं।
1: मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं, मेरे मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकलते, मैं थक गई। 24 घंटे सबके पास है, Everybody has 24 hours. You need to make the best out of it. वो 24 घंटे के किसी के पास 22 घंटे या 26 घंटे नहीं हो सकते। आपने देखना है कि वो 24 घंटे आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं। मैं पूरे 7 से 8 घंटे सोती भी हूँ, मैं रेगुलर 1.5 घंटा वर्कआउट्स के लिए भी जाती हूँ, बच्चों का होमवर्क, ट्यूशन, काम, सब कुछ एक ही उसमें मैनेज होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। यू योरसेल्फ नीड टू प्रिपेयर योर ओन कैलेंडर। हमारे स्कूल्स में नहीं होता था, टाइम टेबल मिलता था हर पीरियड का कि 40 मिनट्स का ये है, 20 मिनट्स का ब्रेक है। यही हमने अपने लाइफ में करना है, चाहे हम लिख के करें, अपने दिमाग में बिठा के करें।
0: मैम, एंटरप्राइजिंग दीवास के बारे में हम बात करेंगे, और मैं ऐसे ही जब क्रॉस चेक कर रहा था 200 प्लस इवेंट्स, प्लस उसके बाद 50,000 से ज्यादा ऑनलाइन जो हम लोग ने सेशंस करे, कैसे मैनेज हुआ इतना? ये एक 200 भी अच्छा खासा फिगर है इवेंट्स करने के लिए।
1: सो देखिए, आई वुड से कोविड हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ, पहले याद है कि कोविड से पहले कल्चर था कि ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम होगा, स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी, हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आया कोविड टाइम से। तो ये शुरुआत इस चीज़ की ऐसे हुई, फिजिकल इवेंट्स एंटरप्राइजिंग दीवास हम लोग करते थे कि बिकॉज इतने सारे वेंडर्स जुड़े हुए हैं, तो हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं, राखी की, कभी तीज की, कभी दिवाली की। ऑनलाइन काम स्टार्ट हुआ कोविड से, जब क्या हुआ सारे दरवाजे सबके लिए बंद हो गए। एंटरप्राइजिंग दीवास वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटीज जिसने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करे। हुआ कि फेसबुक पे फीचर है लाइव, जो हम लोगों ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा था इतना
0: उससे पहले।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमने स्टार्ट करा, जब तक कोई कुरियर कुछ शुरू नहीं हुआ, मैंने सेशंस कराने अपने मेंबर्स के स्टार्ट करे। कोई अगर टैरो रीडिंग में था तो हम आधे घंटे का उनका फ्री टैरो रीडिंग सेशन कराते थे। कोई बच्चों की आर्ट क्लासेस लेता था, हमने ऑनलाइन आर्ट क्लासेस शुरू करी। करते करते करते जब थोड़ा सा कुरियर्स खुले और पार्शियल लॉकडाउन हटा, तब हमने लाइव सेशंस करे। जो लेडीज अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हमने उनके लाइव सेशंस कराए। सो बायर्स उनसे कनेक्ट करके शॉपिंग करना ऑनलाइन स्टार्ट करा। ये वहाँ से जर्नी सारी स्टार्ट हुई।
0: ये मेरे लिए प्राउड फीलिंग और एक थोड़ा सा वो इमोशनल फीलिंग वाला है ना, कि एक फीमेल जो है वो इतनी अपने आप को एनहेंस कर ले रही है, इतने सारी चीजें मैनेज कर ले रही है, और उसके बाद भी वो कितना रिलैक्स होके आज मेरे साथ यहाँ पर बैठ के वो चीजें बता रही है, ताकि बाकी जो फीमेल्स हैं वो उस चीज के लिए थोड़ी सी मोटिवेट हो पाए या थोड़ा सा उस चीज से कुछ सीख पाए या गाइडेंस ले पाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: टाइम फॉर अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर आवर गेस्ट टुडे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और निधि ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल वुमेन या एंटरप्रेन्योर की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? एडुकेशन, नेटवर्किंग, लीडरशिप या फिर सेल्फ बिलीव कि मैं कर लूंगी।
1: देखिए, हमने बहुत सारे केसेस तुषार ये भी सुने हुए हैं कि एक किसी अनपढ़ ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अगर मैं अपने अपने खुद नाना जी की बात करूं, मेरे नाना जी जिसे बोलते हैं अंगूठा छाप, उन्होंने कोई बेसिक पढ़ाई नहीं थी बट उन्होंने उर्दू की किताबें लिखी हुई हैं। मेरे नाना जी को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन से। तो मैं अपने नाना जी का ही अगर एग्जाम्पल लूँ, एक आदमी जिसने बेसिक एजुकेशन भी ली, वो कहाँ तक पहुँच गए। तो मैं यही बोलती हूँ, एजुकेशन बाद में आती है। उनको विश्वास था अपने ऊपर कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है तब आप चाहे जितनी भी हाई एजुकेशन ले लें या बेसिक एजुकेशन भी ले लें, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। एजुकेशन डेफिनेटली इन टुडेज वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट वो आपके अंदर पहले होना चाहिए। आपको खुद के अंदर बिलीफ होना चाहिए कि मेरे को ये आगे करना है। एंड लीडरशिप और नेटवर्किंग, इट ऑल फॉल्स इन टू द प्लेस। ये धीरे धीरे सब कुछ आप सीख लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, जैसे हम तभी बोलते सीनियर सिटीजन को, हम सीनियर क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने इतने साल का एक्सपीरियंस ले लिया। हम यंग बच्चों को यंग अडल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, यंग हैं। तो सीनियर सिटीजन को हम इसीलिए अहमियत देते हैं बिकॉज उन्होंने इतने टाइम में अपनी चीजें सीख ली। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, प्रोवाइडेड यू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड मैं एक चीज जरूर बोलने चाहती हूँ यहाँ पे, आई एड ऑन मोटिवेशन। आपको कोई एक बार मोटिवेट कर सकता है, आपकी चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, एक दो तीन बार। उसके बाद इट इज सेल्फ मोटिवेशन। रोज की लड़ाई आपने अपनी खुद लड़नी है। यू नीड टू चूज योर बैटल्स वाइजली। हर चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे।
0: क्या बेहतरीन और सुंदर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या एक नारी के अंदर वो चीज होनी चाहिए जो उसके बिजनेस को या उसके जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प करें। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: देखो एक मोटिवेशनल मैसेज अगर हमारे लिसनर्स को और मिल जाएगा ना, तो उनका दिन थोड़ा सा ऐसा बन सा जाएगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, निधि सिद्धार्थ खुराना यहाँ पर इस टाइम मेरे साथ हैं। और निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो एक सक्सेसफुल ब्रांड यानी कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जिसका नाम है एंटरप्राइजिंग दीवा, जिसमें लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। बट अगर कोई एक पावरफुल मैसेज आप आज हमारे लिसनर्स को देना चाहें उनकी लाइफ जर्नी को बेटर बनाने के लिए, उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, अपने सपनों को अचीव करने के लिए, या वो हिम्मत ही देने के लिए, तो वो क्या होगा?
1: देखिए, कल तो किसी ने नहीं देखा। अब ये तो वही वाली बात होती है, बहुत बार हम अपने फ्रेंड्स का भी सुनते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, जिम ज्वाइन करना है, कल से करूँगा। कब तक जिम ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो यही चीज़ सेम आपकी लाइफ में भी वैलिड होती है। आपने जो शुरू करना है, आपने अभी शुरू करना है। देर इज़ नो टुमोरो, नोबडी हैज़ सीन कि कल क्या होना है। जो करना है वो आज ही आपने करना है। यू रियली नीड टू थिंक व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। जैसे मेरे साथ अगर आप मुझे बोले मैं कोई पेंटर हूँ, नहीं, मैं किसी और प्रोफेशन में हूँ, एक्सपर्ट हूँ, नहीं। बट मेरे लिए मेरी क्वालिटी थी लीडरशिप, मैनेजमेंट, जो मैंने इतने साल अपने कॉर्पोरेट्स में सीखा, अपनी पढ़ाई से सीखा, मैंने उसी को चैनलाइज करके एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी क्रिएट करी, जिससे मैं मैनेज करके, नेटवर्किंग करके लोगों को साथ में लाई। अदरवाइज मेरा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, आई एम नॉट सेलिंग, बट आई एम सेलिंग, आई हैव ब्रॉट फॉरवर्ड माई ओन स्किल्स। तो आपको अपनी जो है वो रिकोगनाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है। और जहाँ तक बात रही गाइडेंस, कैसे शुरू करें, एंटरप्राइजिंग दीवाज में हम लोग बहुत सारे सेशंस करते रहते हैं, वेर इन वी टेल देम कि किस तरीके से आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, छोटे तरीके से आप ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वही बात है, टिकट हम दे देंगे, जर्नी तो आपने अपनी खुद ही करनी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, चूज योर बैटल्स वाइजली। जिंदगी में डे टू डे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हर चीज़ में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है वो आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। सारी 100 की 100 लड़ाइयाँ आप दिन की नहीं लड़ सकते, वो जो उसमें से टॉप 10 आपकी प्रायोरिटी उस दिन के लिए है, आप वो लेके चलिए, एंड यू विल मेक द फुल यूज ऑफ दोज 24 आवर्स दैट गॉड हैज गिवन यू।
0: थैंक यू सो मच निधि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, ये सारी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए, उन्हें चेयर करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। और वही कहते हैं ना कि कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है जो शायद आपके माइंड में क्लिक हो जाए और आपकी पूरी लाइफ पलट जाए, तो शायद आपकी टॉक से किसी की लाइफ आज चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और बाकी हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आपको ये टॉक कैसी लगी, ये इट्स आरजे तुषार के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, या फिर रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पे आके भी आप बता सकते हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

शर्माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट, म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है? अच्छा आपने कभी नोटिस किया है, वीकेंड खत्म होने के बाद सबसे पहले क्या याद आता है? ऑब्वियसली वीकेंड ही याद आएगा ना, क्योंकि संडे को लगता है ना यार कि ये संडे इतनी जल्दी निकल गया और फिर अचानक से वही सेम रूटीन, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब वापस लाइन में खड़े मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वीकेंड की मेमोरीज अभी भी दिमाग में चल रही है तो उन्हें थोड़ा फिल्मी बना देते हैं, क्योंकि अगले 2 घंटे हम बात करेंगे बॉलीवुड के नए अपडेट्स की, पुराने किस्से याद करेंगे, म्यूजिक की बातें होंगी और थोड़ी सी मेरी बकबक भी साथ में, मतलब एंटरटेनमेंट का प्रॉपर आफ्टरनून डोज। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका वेट दृश्यम के फैंस काफी टाइम से कर रहे थे। दृश्यम द कंक्लूजन जो 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर बनके सामने हैं। वही विजय जिसके लिए फैमिली को बचाने के लिए सच को छुपाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कहानी में पुलिस भी पहले से ज्यादा प्रिपेयर है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी टाइट है, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन और विजय के माइंड गेम्स इंटरेस्टिंगली चलते हैं। सेकेंड हाफ में स्टोरी कोर्टरूम ड्रामा की तरफ जाती है, जहां प्रकाश राज भी अपना स्ट्रांग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस बार पूरी फिल्म को सरप्राइज किया है तो वो है जयदीप अलावत। इनफैक्ट रिव्यू के हिसाब से जयदीप अलावत इतना पावरफुल परफॉर्म करते हैं कि कई मोमेंट्स में वो अजय देवगन से भी स्पॉटलाइट ले जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म सिर्फ पहली 2 मूवीज को रिपीट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती, बल्कि अपनी एक अलग नरेटिव बनाने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल अगर आप दृश्यम के फैन हैं तो ये कंक्लूजन आपको सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन और विजय के दिमाग के नए गेम्स के साथ एंगेज रखता है। और हाँ, इस बार एक बात याद रखिएगा कि विजय सालगांवकर को कॉर्नर करना शायद इजी है, लेकिन हराना वो अभी भी मुश्किल है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक, आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अगर आपको रोमांस के नाम पर वो टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूला देखने की आदत है ना, जिसमें लड़का लड़की को देखता है, प्यार होता है, थोड़ा ड्रामा होता है और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है, तो पूजा मेरी जान उस फॉर्मूले को सीधा चैलेंज करती है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को Z5 पर रिलीज हुई ये हिंदी थ्रिलर एक लव स्टोरी से ज्यादा ऑब्सेशन जेंडर बायस के अराउंड घूमती है। फिल्म में मृणाल ठाकुर है पूजा के रोल में, जिसके पीछे अनिकेत नाम का लड़का ऑब्सेस हो जाता है। पूजा उसे बार बार सिर्फ फ्रेंड के तौर पर देखती है, लेकिन रिजेक्शन के बाद सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि पूजा की पूरी लाइफ उलट पुलट हो जाती है। इसके बाद कहानी कोर्ट रूम और फ्लैशबैक्स के बीच मूव करती है, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि काफी देर तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सही कौन है और गलत कौन है। मृणाल ठाकुर ने पूजा के फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस को काफी कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। विक्रम सिंह चौहान अनिकेत के करेक्टर में आपको इरिटेट भी करते हैं और कुछ मोमेंट्स में उसके लिए सिंपैथी भी फील होगी आपको। फिल्म का सब्जेक्ट फैमिलियर जरूर लग सकता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट सवाल जरूर छोड़ती है कि किसी को रिजेक्ट करना किसी को हर्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले को आपकी हाँ मिलनी ही चाहिए यार। ओवरऑल पूजा मेरी जान एक कॉम्पैक्ट वन टाइम थ्रिलर वॉच है, स्पेशली अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा के साथ थोड़ा सोशल एंगल भी पसंद है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब बॉलीवुड से थोड़ा साउथ साइड चलते हैं, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं। बात हो रही है जूनियर एनटीआर और केजीएफ फेम प्रशांत नील की मच अवेटेड फिल्म ड्रैगन की। कुछ टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि जूनियर एनटीआर की इंजरी की वजह से फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट डिले हो सकती है, क्योंकि जूनियर एनटीआर के हाथ में इंजरी के बाद सर्जरी हुई थी और उन्हें कुछ हफ्तों के रेस्ट की एडवाइस दी गई थी। लेकिन अब मेकर्स ने इन रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है। प्रोड्यूसर रवि शंकर यलमंचली ने कंफर्म कर दिया है कि ड्रैगन अपनी अनाउंस्ड रिलीज डेट पर ही थिएटर्स में आएगी, जो कि है 11 जून 2027। और इंटरेस्टिंगली एनटीआर के रिकवर होने के दौरान प्रशांत नील फिल्म के वो पोर्शंस शूट कर रहे हैं जहां जूनियर एनटीआर की नीड नहीं है, मतलब हीरो रेस्ट पर है लेकिन डायरेक्टर का कैमरा रुकने वाला नहीं है भाई। फिल्म में एनटीआर के अपोजिट रुक्मणी वसंत नजर आएंगी और अनिल कपूर भी नार्कोटिक्स ब्यूरो चीफ के इम्पोर्टेंट रोल में है। तो फिलहाल ड्रैगन की रिलीज डेट लॉक्ड है और प्रशांत नील के डायरेक्शन में जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर और एक मैसिव एक्शन वर्ल्ड, ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए 11 जून 2027 कैलेंडर में मार्क करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी, मैं हूं पलक आप सभी के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

0: कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब फिल्मी फ्लेवर में थोड़ा सा फेस्टिवल तड़का लगाया जाए। नवरात्रि का सीजन है तो गरबा डांडिया की वाइब तो बनती है ना भाई। फरीदाबाद में 17 और 18 अक्टूबर को होने वाली है ग्लोरियस गरबा नाइट, और इसके ऑर्गेनाइजर पीयूष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पीयूष, सबसे पहले तो वेलकम टू फिल्मी फ्लेवर भाई।
2: थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी।
1: ये बताइए कि ग्लोरियस गरबा नाइट का आइडिया आया कैसे और इसमें स्पेशल क्या है?
2: मैम, ये हमने सेक्टर 28 और सेक्टर 34 के लोगों के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि यहाँ पे डांडिया नाइट्स नहीं हो रहे। ज्यादातर फरीदाबाद के लोग दिल्ली जा रहे हैं या फिर फरीदाबाद में जिस एरिया में हम कर रहे हैं वहाँ से दूर हो रहे हैं बहुत। तो हमने सोचा व्हाई नॉट इनके घर के पास किया जाए, ताकि लोग भी आए, उन्हें भी मजा आए, थोड़ी ट्रेवलिंग बच जाए इनकी। तो इस वे में मैम थोड़ा हमने प्लान किया ये चीज।
1: ओके नाइस, चलिए बातों को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

रेडियो महारानी।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब बात करते हैं इवेंट के वेन्यूज की। पीयूष, सबसे पहले 17th ऑफ अक्टूबर को इमेंस रेसिडेंसी है और 18th ऑफ अक्टूबर को रोजवुड ग्रैंड, तो दोनों वेन्यूज को चूज करने का क्या रीजन रहा और ऑडियंस को दोनों वेन्यूज पर क्या स्पेशल एक्सपीरियंस मिलने वाला है?
2: मैम, अगर मैं सेक्टर 34 की बात करूँ तो उन्हें प्रॉपर रूफटॉप मिल रहा है।
1: ओके,
2: प्रॉपर ओपन रूफटॉप है, बट वहाँ की बहुत अच्छी सी डेकोरेशन दे रहे हैं, चाहे वो सरप्राइज है, चाहे आप एक बार आएंगे आपको पता चल जाएगा। वो सेक्टर 28 में भी मैम रूफटॉप है बट वो क्लोज्ड है।
1: ओके,
2: सेक्टर 28 में फर्स्ट टाइम जो हम दे रहे हैं वो हम क्लोज्ड वाला कर रहे हैं, देन ओपन।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: चुल।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब कर लेते हैं भाई, एंटरटेनमेंट में क्या होने वाला है पीयूष। म्यूजिक, गरबा, डांडिया और लाइव परफॉर्मेंसेस में ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? और कोई सरप्राइज है तो थोड़ा हिंट आप बता सकते हैं क्या हमें?
2: मैम अभी तो रिवील नहीं कर सकते कि वो सरप्राइज है, तो व्हाई नॉट कुछ सरप्राइज ही रखते हैं। बट या वी आर गिविंग बेस्ट ड्रेस्ड गिफ्ट्स, बेस्ट डांसर गिफ्ट्स एंड सम मोर गेम्स। लाइक सिर्फ वहां पे डांस नहीं होगा मैम, कुछ गेम्स भी है, लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज भी हम सोच रहे हैं। सो यू नो ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है इस बार।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

तो बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और पीयूष, लास्ट में एक क्विक मैसेज उन लिसनर्स के लिए जो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि टिकट्स ₹199 से स्टार्ट है, तो वो टिकट्स कहाँ से बुक करें और आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
2: मैम, इस टाइम अर्ली बर्ड 50% हमारी सोल्ड आउट है, जो 199 विच इज अर्ली बर्ड टिकट, सो इट्स 50% सोल्ड आउट, ओनली 50% लेफ्ट, एंड देन आपको वो सेम टिकट ₹300 की मिलेगी विच इज 299।
3: ओके,
2: सो Let's grab it.
3: अगर किसी को टिकट्स के लिए कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है?
2: यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9311304040।
3: एक बार आप नंबर रिपीट कर दीजिए,
2: 9311304040। एंड गेट अ 20% डिस्काउंट ऑल्सो बाय अवेलिंग अ लिंक विच वी कैन सेंड टू यू ऑन व्हाट्सएप।
3: ओह सो नाइस। सो लिसनर्स, आप प्लीज देरी मत कीजिए और जल्दी से इनको कॉल कीजिए।
1: ओके, थैंक यू सो मच पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू सो मच मैम।
1: और इसी के साथ आज के फिल्मी फ्लेवर में फिल्मी एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा सा गरबा का रंग भी आ गया। 17th और 18th of October को फरीदाबाद में ग्लोरियस गरबा नाइट होने वाली है, तो अपने दोस्तों फैमिली को रेडी रखिए भाई, आउटफिट प्लान कीजिए और डांडिया स्टिक्स संभाल लीजिए। अब मुझे लेनी पड़ेगी आप सभी से इजाजत। आज के फिल्मी फ्लेवर को यहीं करते हैं शट डाउन। मैं हूं पलक, मिलूंगी फिर कल इसी जगह नई फिल्मी अपडेट्स और नए किस्सों के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: कभी पॉप कल्चर।
1: एक बात मैं बोलना चाहूंगा और वो ये है, ढल गया दिन हो गई शाम, ट्रिप खत्म आज से काम। आज से काम करना शुरू कर दिया ना आप लोगों ने, क्योंकि मैंने तो कर दिया है।
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
1: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर मैं सभी का स्वागत करता हूं दिल से। और एक बात बोलना चाहूंगा, लोग घूमने गए हुए थे, वीडियोस आई हैं इतनी सारी की सारी, और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है। और उसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हुआ है क्या आप लोगों को? मुझे लगा मुझे हो गया है, मतलब मुझे विश्वास हो चुका है कि मुझे तो हो ही चुका है इसका एडिक्शन, क्योंकि जब मोबाइल नहीं मिलता ना तो फिर ऐसे घबराहट सी होने लग जाती है। एक्चुअली हुआ ये था, मैं अभी मार्केट गया और गलती से फ़ोन घर पर छोड़ गया। अब मेरे मन में ये था कि मैं मोबाइल लेकर आया हूँ, बट हुआ ये था कि मोबाइल लेकर ही नहीं गया था और मैंने मार्केट में हंगामा मचा दिया कि मेरा फ़ोन गुम हो गया। मैंने दो तीन लोगों से बोला, मेरे प्लीज़ मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिए। कोई कॉल करने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको पता है ना आजकल स्कैमर्स भी तो घूम रहे हैं, ऐसे कॉल फॉरवर्डिंग लगा देते हैं आपके फ़ोन पर। खैर, उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए फिर मैंने एक और बंदे से बोला, उसने फ़ोन किया जब मेरे नंबर पर, तो मेरे घर वालों ने फ़ोन उठाया। फिर उसके बाद मुझे सुकून मिला कि हाँ, मैं फ़ोन घर पर ही छोड़ कर आया हूँ। और इसके अलावा अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखो जी, देखो अक्टूबर का पहला हफ्ता अगर हम लोग बोलें तो वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछला हफ्ता तो मंडे से शुरू नहीं हुआ था ना, तो ये बोलेंगे अक्टूबर का पहला मंडे आ चुका है और अक्टूबर पूरी की पूरी फेस्टिव वाइब्स दे रहा है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, शाम को फिर से ठंडी ठंडी हवा चलेगी। दिन में धूप तो थी बट कहीं ना कहीं वो सुकून वाली ठंडक सी थी, मतलब हवा में वो ठंडक थी। और इसी के साथ साथ बात करेंगे हम लोग इस लॉन्ग वीकेंड ट्रिप की, जो कि लोगों ने शेयर किया है सोशल मीडिया पर, जहां पर कुछ लोग सड़क पर सोते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को होटल के रूम ही नहीं मिले हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में करेंगे बात। लेकिन रेडियो महारानी 9.6 पर आप सभी के लिए गाने भी चलेंगे, तो अभी फिलहाल मैं आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ और वापस आकर और भी ढेरों बातें करनी है। तो नहीं, वैसे ये गाना लाडो MC Square की आवाज़ में सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव, आपके साथ, सुनते रहिए रेडियो महारानी। कुछ

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूं क्या।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात बोली थी, और वो बात ये थी कि क्या आप लोगों में से किसी को भी मोबाइल फोन का एडिक्शन हुआ है? क्योंकि मुझे तो हो गया है, एंड बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जिनको मोबाइल फोन का एडिक्शन हो चुका है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? मोबाइल का एडिक्शन अगर आपको नहीं हुआ है ना, तो लकी हो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो होता क्या है, देखो हम लोग ना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और हमें कब पता नहीं चलता कि फोन हमें कब से यूज करना शुरू कर चुका है। सोशल मीडिया है, फिर उसके अलावा व्हाट्सएप मैसेंजर है, फिर उसके अलावा और गेम्स भी होती हैं, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं या फिर हम लोग इंटरनेट पर वीडियोस देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम लोगों को मोबाइल एडिक्शन हो गया है, एंड सबसे ज़्यादा एडिक्शन तो हुआ है छोटे बच्चों को। मेरी फैमिली में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बिना फ़ोन देखे रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाते, तो उन बच्चों का मैं फ्यूचर सोच के घबरा जाता हूँ। क्योंकि जब हम छोटे थे हम लोगों को बोला जाता था टीवी ज़्यादा देखते हो, चश्मा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल के बच्चे तो स्क्रीन्स देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन की, उनको चश्मा नहीं लगेगा क्या? और इसके अलावा अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा यार इतना नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली इस वीडियो में क्या हुआ है, इस वीडियो में एक स्कूल है, स्कूल का प्रशासन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दो टीचर्स की आंखों पर पट्टी बांध दी और लाल लाल कलर लगा दिया कि ये ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चलाते थे इसलिए इनकी आँख निकालनी पड़ गई। और फिर पूछा बच्चों से कि तुम में से कौन मोबाइल फ़ोन चलाता है, तो पहले तो एक दो बच्चों ने हाथ उठाया, तो उन बच्चों को उठा के एम्बुलेंस के अंदर डाला और जस्ट उनके आंखों पे नॉर्मल पट्टी बांध दी और बोल दिया तुम्हारी आंख निकाल दी गई है, और वो बच्चे रोना शुरू हो गए और उसको देखकर बाकी सारे बच्चे रोने लग गए। तो ये वीडियो वायरल हुई तो कुछ लोग हंसी मजाक में ले रहे, बट जोक्स अपार्ट दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि बच्चों के अंदर ट्रॉमा बढ़ दिया और बच्चे अब शायद मोबाइल नहीं चलाएंगे, बट जब बड़े हो जाएंगे वो भी बोलेंगे हैं इतनी सी बात पे हम लोग रो रहे थे। बट देखो लेसन देना चाहिए था, बट ऐसी लेसन मुझे लगता है तरीका गलत था। तो इस पर आप लोगों की भी अपनी अपनी राय हो सकती है, ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आइए, वहीं पर मिल जाएंगे हम आपको, आरजे गौरव के नाम से भी मिल जाऊंगा, और उसके अलावा रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सुनिए ये गाना।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से, और वो सवाल बहुत सिंपल सा है। जस्ट इमेजिन, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके पास एक ओल्ड कपल आता है, एक बुजुर्ग कपल आता है, बोलता है बेटा अपनी सीट मुझे दे दोगे? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। अब ये जो मैंने सवाल किया था आप लोगों से कि एक बुजुर्ग कपल आपके पास आता है, आपसे ट्रेन की सीट की गुजारिश करते हैं, बोलते हैं कि आप हमारी वाली सीट ले लो जो कि ना ऊपर वाली है, आप नीचे वाली सीट हमें दे दो, तो क्या आप दे दोगे? मैं होता तो दे देता, बट इस लड़के ने नहीं दिया। और इसकी पूरी पूरी जो वीडियो तो नहीं, माफ कीजिए, ये पोस्ट है, ये वायरल हो रहा है। और इसमें हुआ ये कि एक लड़का अपनी लोअर बर्थ में, साइड लोअर बर्थ नहीं होती, वहां पर बैठा होता, एक कपल इसके पास आता, उन्होंने इससे बोला कि बेटा आप इस हमारी ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ, हमें ये वाली सीट दे दो। तो उस लड़के ने बोला अंकल एक शर्त है, सिंपल सा है कि मैंने ये सीट 2100 रुपये में बुक की है, तो आप इसका 50% दे दीजिए, आप 1000 रुपये दे दीजिए मुझे, मैं सीट आपको दे दूंगा। बस इतना सा कहना था उसका। और अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बहस छिड़ चुकी है, लोग कह रहे हैं कि इंसानियत खत्म हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। मेरे मन में दो चीज़ें आई, एक तो ये कि लड़का गलत है, फिर दूसरी चीज़ आई कि लड़का सही भी तो है, क्योंकि जब हम लोग सीट बुक करते हैं तो प्रेफरेंस भी तो अपनी चूज़ करते हैं ना, कि हम लोगों को कौन सी सीट में बैठना है, कौन सी सीट नहीं चाहिए, कौन सी सीट चाहिए, और उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो प्रेफरेंस में हम लोग सेट करते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि उस बुजुर्ग कपल की टिकट उनके बच्चों ने बुक करी होगी, मान लेते हैं, और अगर उनके बच्चों ने ये टिकट बुक करी है तो उन लोगों ने शायद बुकिंग करते टाइम ये चीज़ ध्यान नहीं दी होगी कि हमारे मम्मी पापा ऊपर वाली सीट पे बैठेंगे। और चलो ऊपर वाली सीट उनकी बुक हो गई, फिर उसके बाद अब सोचिए लाइक वो लोग ऊपर चढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ पर इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि दे देनी चाहिए थी सीट, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देनी चाहिए थी सीट, सही किया लड़के ने। तो इस पर सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बट मैं तो एक राय दूंगा कि गाना सुनते हैं। रेडियो महारानी 89.6 पर एक गाना चला रहा हूँ, सारी टेंशन ने दूर कर दो, वैसे भी इतने लंबे वीकेंड से घूम कर आए हो ना, करेंगे इसके बारे में बात गरीब गाने के बाद।

0: दीवार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

कोई सड़क पर सो रहा था तो कोई गाड़ी के अंदर सो रहा था, कोई एटीएम के अंदर सो रहा था तो कोई कहीं पर सो रहा था, कोई पार्क की बेंच पर सो रहा था। और ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया की वीडियोस को देखकर। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। यार रेडियो का गौरव तो है आप सभी के साथ, मगर जो मैं ये वीडियोस की बात कर रहा हूँ, ये आई है कुछ विजुअल्स फ्रॉम मनाली टू नैनीताल टू कसौली टू कसौल टू मसूरी, सब जगह की वीडियोस आई हैं और मेरा बहुत मन था जाने का। अब लगता है कि हाँ अच्छा किया कि मैं नहीं गया, क्योंकि जो वीडियोस आई है कैंची धाम पर इतनी ज़्यादा भीड़ और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये आप सही कर रहे हैं, भक्ति के नाम पर आपने इतनी ज़्यादा भीड़ फैला दी उधर। तो मैं आपको बता दूं, देखो कैंची धाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बचपन से उस रोड से जा रहा हूं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं क्योंकि आई बिलोंग टू उत्तराखंड और मैं हमेशा से वहीं से जाता था। हम लोग हाथ जोड़ते थे, मत्था टेकते थे एंड हम चले जाते थे। बट आजकल के लोगों की भीड़ देख के ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया पर देख कर ये सब लोग पहुँच चुके हैं, और इवन हनुमान अंश मूवी जब से आई है तब से तो लोगों ने भीड़ और भी ज़्यादा कर दी है। तो इसके बारे में आप लोगों की भी डिफरेंट राय होगी। अब बात करते हैं घूमने फिरने की। लोगों ने सोचा कि हम लोग नैनीताल तो घूमने जा ही रहे हैं, वहीं से कैंची धाम चले जाएंगे, या फिर लोगों ने सोचा होगा हम लोग कैंची धाम घूमने जा रहे हैं, हम नैनीताल भी चले जाएंगे। तो नैनीताल की वीडियोस आई, कुछ विजुअल्स आए जहां पर किसी ने तो स्कॉर्पियो खाई में गिरा रखी है, किसी ने रोड के किनारे गाड़ी लगा के उसी के अंदर सो रहे हैं, तो कोई कहीं गया है तो कोई कहीं गया है। और इसके अलावा मसूरी की मॉल रोड के विजुअल सामने आए जहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, और उसके अलावा मॉल रोड से दूर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तीन तीन चार चार घंटे लोग जाम में फंसे हैं। अब यहाँ से निकल के जब ऋषिकेश पे पहुँचे तो ऋषिकेश में भी दो दो तीन तीन घंटे सिर्फ 2 किलोमीटर को कवर करने में लग रहे थे। सोचिए लोगों की गाड़ी से कितना फ्यूल खर्च हुआ होगा, सोचिए कितना ज़्यादा दिक्कतें हुई होगी लोगों को। खैर सबने अपना ट्रिप सक्सेसफुली कवर कर लिया है और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छा हुआ कि सब लोग इजीली वापस आ गए और कोई कैजुअलिटी नहीं सामने, अभी तक तो कोई सामने नहीं आई, ये यानी बता बस यही बोलना चाहूँगा। इसके अलावा आपका भी लॉन्ग वीकेंड ट्रिप अच्छा गया होगा, बस इसी के बारे में सोच सकते हैं। और अभी रेडियो महारानी पर गाने चलाते हैं, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव आपके साथ, बातें और गाने चलते रहेंगे। आप सुन रहे रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सुनो सुनो,
3: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
4: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे रफ्ता।

जब से मेरा शो शुरू हुआ है ना, तब से मैं तीसरी बार पूछने जा रहा हूँ कि क्या आप लोगों को भी मोबाइल फोन का एडिक्शन हो गया है, क्योंकि मोबाइल फोन का एडिक्शन मुझे तो बहुत ज्यादा हो गया है। और रेडियो महारानी पर स्वागत है।

आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं। आप भी देखते होगे, है ना? मैं भी देखता हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, यानी कि अपना कितना फ़ोन चलाते हैं 24 घंटे में, तो इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, आप लोगों को अगर आपके पास आईफोन है, पहले आईफोन वालों की बात करते हैं, आपको अपनी सेटिंग्स खोलनी है। सेटिंग्स में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पर स्क्रीन टाइम आपको दिख जाएगा, एक पर्पल कलर का आइकन होएगा। और अगर आपका पहली बार है तो आप ऐप एंड वेब एक्टिविटी पर जाके उसे ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको डेली एवरेज दिख जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप कितना ज़्यादा देखते हैं, और इसको आप फिर वीक में भी मतलब सेट कर सकते हो फिल्टर लगा के, कि आप हफ्ते में कितनी बार मोबाइल फ़ोन देख रहे हो या फिर आप दिन में कितने घंटे मोबाइल फ़ोन देख रहे हो। और इसी के साथ साथ अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो भी आप लोग चेक कर सकते हो। उसमें भी आपको यही करना पड़ेगा कि आपको अपना फ़ोन खोलना है, आपको फ़ोन की बेसिकली सेटिंग्स में ही जाना होता है, और सेटिंग्स में जाके भी आप लोग डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल पे जाइए, वहाँ पर आपको सारा का सारा स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। तो ये जो स्क्रीन टाइम है ना, ये दिखाता है कि हम लोग कितना ज़्यादा मतलब अपना फ़ोन चला रहे हैं। तो इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी तक जब तक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने पूरा 4 घंटे 15 मिनट आज पूरे दिन भर फ़ोन चलाया है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चलाया है और थोड़ा बहुत अदर। फिर उसके अलावा मैं न्यूज़ देख रहा था, गूगल चलाया मैंने ड्राइव खोल के देखी, ये सब चीज़ें मुझे पता लग गई। और इसके अलावा आप लोग भी ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेटिंग्स में जाइए, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में जाइए, वहाँ पर जाके आपको आपका स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। बस इसको हो सके तो कम कर देना, बस नथिंग एल्स। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी

क्या आप लोगों के सपने में कभी ऐसा है कि आप लोग कोई बड़ा सा कैश प्राइज जीत चुके हैं या फिर आप एक लॉटरी जीत चुके हैं, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, याद है ना आप लोगों को। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। मतलब आप सपने में देख रहे हैं कि आप बहुत सारे पैसे जीत गए हैं या फिर कैश प्राइज जीत गए हैं या फिर आप कोई गेम खेल रहे थे वो जीत गए हैं, जैसे क्लॉ मशीन नहीं होती उसमें जीत गए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है। देखो सिंपल सा मतलब ये है कि आपको आपके अंदर रिकग्निशन की डिज़ायर है, आपका माइंड में मतलब ये फीलिंग है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, तो इसका रिवॉर्ड कब मिलेगा, आपको रिवॉर्ड चाहिए। इसके अलावा एक अचीवमेंट का भी सिग्नल है कि आप कोई गोल अचीव करने या फिर कंपटीशन जीतने या फिर आप अपने आप को प्रूव करने की एक कोशिश कर रहे हो और आपकी सबकॉन्शियस फीलिंग माइंड में है। और अगर रिसेंटली पैसा, करियर, अर्निंग या फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे हो तो उसका भी मतलब सिंपल यही है, वो चीज़ सपना बनकर, एक कैश प्राइज बनकर आपके सपने में आती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और एक और चीज़, अगर सपने में प्राइज़ जीतकर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या खुशी हो रही है ना, तो इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अचीवमेंट और वैलिडेशन की तरफ जाता है। अगर शॉक या डिसबिलीफ में थे आप लोग कि ये कैसे हो गया, तो हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और अगर इसके हम लोग देखें कि इसमें कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन भी दिखाई देता है क्या, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन शायद हो भी सकता है और शायद नहीं। हो सकता है फाइनेंशियल गेन हो जाए, हो सकता है रिकग्निशन मिल जाए, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आपके पास आने वाली हो, हो सकता है कॉम्पिटिशन में आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सपने को डिकोड करती है। और हाँ, एक और चीज़, लक भी हो सकता है, यानी कि आपका लक अब अच्छा जाने वाला है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी चीज़ पे पैसा लगा दो, आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे पैसा लगा दो, आप शेयर मार्केट में लॉटरी में पैसा लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना। आप लोगों को मेहनत करते जानी है और कंसिस्टेंट रहना है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, चला रहा हूँ आप लोगों के लिए ये गाना। I've been

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

शनिवार यानी कि 3 अक्टूबर को मैच देखा था आप लोगों ने, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई। मुझे लग रहा था इंडिया जीत जाएगी बट नहीं हुआ। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। मैच शुरू हुआ था कब, परसों सैटरडे को, और इंडिया की बैटिंग आई थी। 3 रन पर पहली विकेट गिर गई, 4 रन पर दूसरी विकेट गिर गई। सबको लगा अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, विराट कोहली 0 पर आउट हुए थे भाई, मतलब मेरा दिल टूट गया था। और वो लोग इतने ज़्यादा खुश हुए थे ना, खुश होने की बात भी थी क्योंकि बहुत जल्दी आउट हो गए थे। खैर फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने कमान संभाली और उनके साथ दिया, किसने उनका साथ दिया, गायकवाड़ साहब ने, ऋतुराज गायकवाड़ आगे खेलने के लिए, और दोनों ने अच्छी पारी खेली। रोहित शर्मा की अगर हम लोग बात करें तो 92 रन रोहित शर्मा ने बनाए, वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो 57 रन बनाए। बट यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी केएल राहुल की, जो कि नॉट आउट रहे विद रन्स 129, 6 छक्के 10 चौके और बहुत ही अच्छी बैटिंग करके दिखाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारी अपोजिट टीम यानी कि वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ में एक प्लेयर है जो कि उनके कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है, मैं बोलूँगा बेस्ट बैट्समैन भी है। इस बंदे का नाम है शाय होप, और ना तो शाय है और होप तो इनके थ्रू रहती ही है टीम में। 162 रन बनाए भाई इस बंदे ने 143 बॉल खेलकर, मतलब आधे ओवर्स तो इस लड़के ने खुद ने खेल लिए, सोच लो 24 ओवर इस लड़के ने खुद ने खेले हैं, और 162 रन बनाए, 17 चौके और सिर्फ 3 छक्के। और यहाँ पर थोड़ी बहुत तारीफ मैं इंडियन बॉलर्स की भी करूँगा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुलदीप यादव की, 10 ओवर में सिर्फ 62 रन खाए इन्होंने। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगे पड़े हमें कंबोज साहब, और कंबोज साहब ने 9 ओवर में 82 रन दिए। और वहीं पर मोहम्मद सिराज का जलवा भी नहीं चल पाया, एक विकेट लिए उन्होंने बट 52 रन दे दिए थे। तो इंडिया टोटली मैच हार गया, वेस्ट इंडीज़ 1/10, 5 विकेट्स 10 बॉल लेफ्ट, हाँ लास्ट में 10 बॉलें बची थी और वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत गई थी। बट ठीक है कोई नहीं, हार जीत चलती रहती है। बट 2-1 से इंडिया ने ये सीरीज़ जीत ली। अब देखते हैं आने वाली सीरीज कौन सी है, वो तो वक्त बताएगा, मगर अभी वक्त हो चुका है आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर गाना चलाने का। सुनिए इस गाने को, मैं हूं गौरव आपके साथ।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो, रोड सेफ्टी कैंपेन।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

साल 2027 का वर्ल्ड कप का पूरा का पूरा स्केड्यूल सामने आ चुका है ब्रो। कब से मैच शुरू होंगे से कब तक मैच चलेंगे सब कुछ आ चुका है। क्या आपको जानना है कब से मैच शुरू होने वाले हैं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? 2 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक ये सारे के सारे मैचेस होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप 2027। अब इसमें टीम इंडिया से कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये तो वक्त बताएगा, बट इंडिया का पहला मैच कब होने जा रहा है और किसके साथ होने जा रहा है वो आपको मैं बताऊंगा। 7 अक्टूबर मतलब आज से ठीक 1 साल और 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और वो होगा केप टाउन में। और उसके बाद बता दूं आप सभी को ये सारे मैचेस होने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में और जिम्बाब्वे में साल 2027 का वर्ल्ड कप। इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सेकंड मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो है संडे 10th ऑफ अक्टूबर को। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टीम इंडिया का एक और मैच है अफगानिस्तान के साथ, वो है 14 अक्टूबर को थर्सडे को। फिर उसके बाद टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। और फिर उसके बाद टीम इंडिया का मैच है जिम्बाब्वे के साथ जो कि है 24 अक्टूबर को, और वो भी संडे के दिन ही होगा। अभी और भी ज़्यादा फिक्चर्स आने वाले हैं जिसमें पता लग जाएगा कि टीम इंडिया के साथ और किस किस के मैचेस होने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो पहला मैच होगा सैटरडे 2 अक्टूबर को, और उसके लिए अभी तक क्वालिफायर अनाउंस नहीं हुए हैं, मतलब अभी बहुत सारे टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करी है। और इसके अलावा आप सभी को बता दूं इस बार अच्छी अच्छी टीम्स हैं, मतलब जिम्बाब्वे भी खेलने जा रही है इस बार, ऑस्ट्रेलिया भी खेलने जा रही है, न्यूजीलैंड भी खेलने जा रही है, मतलब जो हमेशा खेलते हैं तो। बट इसके अलावा अभी 3 टीम्स हैं जो क्वालिफाई शायद करने वाली हैं। अब वो 3 टीम्स कौन सी हो सकती है ये तो वक्त बताएगा। बड़े भी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है आप सभी के लिए गाने चलाने का, तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्ले सेल प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

क्या आपको पता है रेडियो महारानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो पर ही नहीं रहता, ऑन ग्राउंड भी जाता है, बट ऑन ग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जाता है। जैसे कि अक्टूबर आ चुका है, तो अक्टूबर में इस बार हम लोग बहुत सारे गरबा और डांडिया नाइट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आपको ऑन ग्राउंड दिखाई देंगे। बट अभी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। अब जब रेडियो महारानी ऑन ग्राउंड जाता तो क्या होता है बता दो।

सभी को। वमानी हरिकेन्स जो कि रेडियो महारानी से जुड़ी हुई ही एक टीम है और उन्होंने अभी रिसेंटली एक कप जीता है और कप जीतने के लिए उन्होंने जो मेहनत करी वो हैट्स ऑफ अमेजिंग थी। 20 ओवर में 184 रन विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अगर मैं बात करूं बैट्समैन की तो हमारे सबसे बढ़िया बैटर रहे आरसी भारद्वाज जिन्होंने 17 बॉलों में 2 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 32 रन बनाए और उसी के साथ साथ पूरी टीम ने योगदान दिया। सबने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर रन बनाए जैसे कि संजय रावत जी थे, रमन भाटिया, प्रेमचंद जी, गौरव ठाकुर जो कि नॉट आउट रहे पूरे टाइम 27 रन बनाए इन्होंने 23 बॉलों में। नहीं मैं वो गौरव नहीं हूँ उनके अलावा मोहिंदर जी थे, कार्तिक था और साथ में महेश भी। तो इन सब ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन किया। जैसे महेश की अगर मैं बात करूँ तो 12 बॉलों पर 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 27 रन बनाए। अब यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 184 रन तो बना दिए, 185 का टारगेट था तो सोचा कि अपोजिट टीम शायद अच्छा खेल सकती है हमसे, बट यहाँ पर हमारे बॉलर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे निकले जैसे कि प्रेमचंद जी। इन्होंने 4 ओवर डाले, 19 रन दिए और 4 विकेट भी निकाल ले। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ और बॉलर्स की तो आशीष कुमार हमारे बॉलर हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर डाले थे, 30 रन दिए मगर साथ ही साथ 3 विकेट भी ली। और मोहिंदर कक्कर जी की बात करूं तो उन्होंने 4 ओवर में 30 रन खाते हुए 2 विकेट हासिल की। वहीं पर कार्तिक ने भी बॉलिंग करी और उन्होंने भी 4 ओवर में 28 रन देते हुए 1 विकेट हासिल करी और टोटली हम लोगों ने ये मैच जीत लिया। ये मैच था वमानी हरिकेन्स वर्सेस मीनू क्रिएशंस LLB। तो ये मैच जीत लिया है वमानी हरिकेन्स ने और एक कप अपने नाम कर लिया है। तो आप लोग भी अगर क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड हैं तो रेडियो महारानी सुनते जाइए क्योंकि ऐसी ही और भी अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। मैं हूं गौरव, आपके साथ सुन रहे हैं आप HR 896।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

अब बीतते दिनों के साथ टेम्परेचर भी डाउन जाता चला जाएगा धीरे धीरे धीरे। आज मैक्सिमम टेम्परेचर था 36 डिग्री, इट वॉज फीलिंग एज 39 डिग्री, बट अब आने वाले दिनों में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर 34, 33, 32 मिलने वाला है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ। एंड मौसम बदल रहा है, नवरात्रे आने वाले हैं, तो आप सभी से बोलना चाहता हूँ मैं एक बात, और वो बात ये है कि देखो अपना ख्याल रखना, मौसम बदल रहा है, स्लाइट कूलिंग एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 2 डेज, तो इसमें वायरल फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर बात करूँ एयर क्वालिटी की, तो ऑल्दो पूरा फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर बाहर गया हुआ था, बट अचानक से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ गया है, एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है, 200 के आसपास एयर क्वालिटी पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पूरा एयर क्वालिटी में आती है 200। अब मैं ये सोच रहा था कि हम लोग पेड़ लगाते हैं हर साल हम लोग एक इनिशिएटिव लेते कि पेड़ लगाओ, क्योंकि बहुत पेड़ काट लिए, बहुत कुछ कर लिया, बट पेड़ लगाने के बावजूद ये सारा का सारा पोल्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी बेवजह इधर से उधर घुमाते हैं, हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, हम लोग एसी में बैठ के

डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।

0: सेवा जनहित में जारी।
1: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप कुछ भी कर दो, उससे कभी भी पूछ लो क्या हाल है, वो बोलता है बस यार ठीक ही है, मतलब वो कभी भी थैंकफुल नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर। उसकी लाइफ में लॉटरी भी लग जाएगी ना तब भी वो बोलेगा बस ठीक ही तो है, क्या हो गया, इससे भी ज्यादा लग सकती थी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड क्या हाल है मेरे दोस्त, अक्सर इस टाइम हम लोग यही बात करते हैं कि क्या हाल है। तो अगर आपका भी कोई दोस्त ऐसा जो कभी भी थैंकफुल होता ही नहीं है तो उसको कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, उसको बोलेंगे क्या हाल है, बोलता है ठीक ही है, उसके लिए कुछ भी कर दो वो ये रिप्लाई देगा, इसको फेवर करो तो थैंक यू नहीं बोलता, अगला फेवर कब करोगे ये ज़रूर पूछ लेता है। और इसके अलावा इसकी डिक्शनरी में थैंक यू नहीं है सिर्फ, और क्या कर सकते हो, बस यही सवाल रहता है इसके मन में। और हाँ एक और चीज़, इससे कभी पूछ लो क्या हाल है, ये बोलेगा इसके लिए, मतलब सिंपल सी बात है, मैं अगर बोलूँ इसके लिए अगर आप जान भी लगा दोगे ना तो बोलेगा इतना तो करना ही चाहिए था, ये तो बेयर मिनिमम है। और हेल्प मांगते वक्त भाई प्लीज भाई प्लीज़, और काम जैसी हो जाएगा बोलेगा चल ठीक है भाई ओके, थैंक यू नहीं बोलेगा। बट इसको गिफ्ट दो तो थैंक यू नहीं, बिल कितने का था ऐसे पूछ लेता है, भाई कितने का पड़ा है तेरे को, अरे क्यों पूछ रहा है, हम तेरे को बिल गिफ्ट दे रहे हैं बिल नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा इसका ग्रैटिट्यूड लेवल फ़ोन की बैटरी से भी कम है, 0% पे परमानेंटली, मतलब ग्रेटिट्यूड इसके अंदर है ही नहीं। उसके लिए कुछ भी स्पेशल करो तो रिएक्शन नहीं होता, ऑब्वियसली तू दोस्त है मेरा तू तो करेगा ही, भाई थैंक यू तो बोल दिया करो कभी। और आपका एक दोस्त ऐसा ज़रूर होगा कि उसकी एक बार हेल्प क्या कर दो, उसे लगता है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, बार बार बार बार बार बार हेल्प मांगना शुरू कर देता है। और इससे कभी भी थैंक यू की उम्मीद मत रखना, क्यों, क्योंकि ये बंदा फेवर को अपना बर्थ राइट समझता है, ये सोचता है कि आप लोग इसका फेवर कर रहे हो तो मतलब ये इसकी जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग दूरी बनाए रखें, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ आते हैं कुछ लेसन देने के लिए, तो ये वही लोग होते हैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, बात और गाने चलते रहेंगे, मैं हूँ गौरव आपके साथ, एंड आप सुन रहे हैं प्रोग्राम HR 896।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: क्या आपको पता है कि इंडिया के गाने, बॉलीवुड के जो गाने हैं, वो उनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसमें क्रॉस बॉर्डर म्यूजिकल इन्फ्लुएंस रहा है, भले ही वो पड़ोसी देश हो या फिर बहुत दूर वाले देश हो।
1: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, तो H-R-H-96 पर आ जाता है
0: रेडियो का गौरव,
1: आरजे गौरव।
0: या बिल्कुल, आरजे गौरव है आप सभी के साथ, एंड आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। एक बात बोलना चाहूंगा, म्यूजिक डीकोड हम लोग कर रहे हैं आज, और क्रॉस बॉर्डर म्यूजिक, ये मैं बात करना चाहूंगा। एक ना फोक म्यूजिक है और उस गाने का नाम है एक कांचा मलाई सुनको तारा। अब ये नेपाली फोक म्यूजिक है, और हुआ क्या था, शमी कपूर, आप सभी को पता है शमी कपूर कौन है, वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दार्जिलिंग में, और उनको एक नेपाली फोक ट्यून सुनाई देती है जिस गाने की मैंने अभी बात करी। गाने का नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक कांचा मलाई सुनको तारा, ठीक है। अब मुझे इसके एग्जैक्ट बोल तो पता है, बट मेरे को हमिंग नहीं पता। और ये गाना इन्होंने वहाँ सुना और इनको ये बहुत अच्छा लगा, और कुछ सालों बाद ये आर डी बर्मन साहब के साथ, यानी कि पंचम दा के साथ बैठे और इन्होंने इस गाने का इस्तेमाल किया फिर 1966 मूवी तीसरी मंजिल में, दीवाना मुझसे नहीं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे गाने, द बंधु 1992 में एक फिल्म आई थी तो उसमें भी इस गाने का इस्तेमाल किया गया था, चलो चले साथिया कुमार सानू ने गाया था, वो आया था नया नया सजाऊ है संसार। मतलब ये जो गाना है ना, नया नया सजाऊ है संसार, ये नेपाली म्यूजिक है जिसको चेंज करके चलो चले साथिया बनाया गया, मतलब इंडिया में। और इसके अलावा धारा को पानी उदित नारायण ने गाया था और उसको भी रीमेक किया गया सुदेश भोसले द्वारा मौसी से। और इसके अलावा बहुत सारे और भी गाने हैं। मैं जब भी बात करता हूँ क्रॉस बॉर्डर म्यूजिक के बारे में तो एक अजीब सी फीलिंग आती है कि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि इंडिया के गाने बाहर चले जाते हैं और बाहर के गाने इंडिया जाते हैं, और इनके बारे में और भी बातें करेंगे मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर तनु। आई एम एम डी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट। आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स एंड यस, आई ऑल्सो रन अ सप्लीमेंट कंपनी। आई एम अ फेलो इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड माई एडवाइस टूडे कम्स फॉर वुमेन हु हैव डन देयर फर्स्ट इनिंग एंड नाउ देयर इन देयर सेकेंड इनिंग। पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो इस टाइम पे।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: जरूरत हो कभी भी तो आप आपको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया था?
2: नहीं, क्यों?
0: तो फिर हम

कपल आता है, एक बुजुर्ग कपल आता है, बोलता है बेटा अपनी सीट मुझे दे दोगे। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। अब ये जो मैंने सवाल किया था आप लोगों से कि एक बुजुर्ग कपल आपके पास आता है, आपसे ट्रेन की सीट की गुजारिश करते हैं, बोलते हैं कि आप हमारी वाली सीट ले लो जो कि ना ऊपर वाली है, आप नीचे वाली सीट हमें दे दो, तो क्या आप दे दोगे? मैं होता तो दे देता, बट इस लड़के ने नहीं दिया। और इसकी पूरी पूरी जो वीडियो तो नहीं, माफ कीजिए, ये पोस्ट है, ये वायरल हो रहा है। और इसमें हुआ ये कि एक लड़का अपनी लोअर बर्थ में, साइड लोअर बर्थ नहीं होती, वहाँ पर बैठा हुआ था। एक कपल इसके पास आता, उन्होंने इससे बोला कि बेटा आप इस हमारी ऊपर वाली सीट पर बैठ जाओ, हमें ये वाली सीट दे दो। तो उस लड़के ने बोला, अंकल एक शर्त है, सिंपल सा है कि मैंने ये सीट 2100 रुपये में बुक की है, तो आप इसका 50% दे दीजिए, आप 1000 रुपये दे दीजिए मुझे, मैं सीट आपको दे दूंगा। बस इतना सा कहना था उसका। और अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बहस छिड़ चुकी है। लोग कह रहे हैं कि इंसानियत खत्म हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। मेरे मन में दो चीज़ें आई, एक तो ये कि लड़का गलत है, फिर दूसरी चीज़ आई कि लड़का सही भी तो है, क्योंकि जब हम लोग सीट बुक करते हैं तो प्रेफरेंस भी तो अपनी चूज़ करते हैं ना, कि हम लोगों को कौन सी सीट में बैठना है, कौन सी सीट नहीं चाहिए, कौन सी सीट चाहिए। और उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो प्रेफरेंस में हम लोग सेट करते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि उस बुज़ुर्ग कपल की टिकट उनके बच्चों ने बुक करी होगी, मान लेते हैं, और अगर उनके बच्चों ने ये टिकट बुक करी है तो उन लोगों ने शायद बुकिंग करते टाइम ये चीज़ ध्यान नहीं दी होगी कि हमारे मम्मी पापा ऊपर वाली सीट पे बैठेंगे। और चलो ऊपर वाली सीट उनकी बुक हो गई, फिर उसके बाद आप सोचिए लाइक वो लोग ऊपर चढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि दे देनी चाहिए थी सीट, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देनी चाहिए थी सीट, सही किया लड़के ने। तो इस पर सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बट मैं तो एक राय दूंगा कि गाना सुनते रेडियो महारानी 89.6 पर एक गाना चला रहा हूँ, सारी टेंशन दूर कर दो। वैसे भी इतनी लंबी वीकेंड से घूम कर आए हो ना, करेंगे इसके बारे में बात मगर इसका

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज

क्या आप लोगों के सपने में कभी ऐसा है कि आप लोग कोई बड़ा सा कैश प्राइज जीत चुके हैं, या फिर आप एक लॉटरी जीत चुके हैं, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, याद है ना आप लोगों को? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। मतलब आप सपने में देख रहे हैं कि आप बहुत सारे पैसे जीत गए हैं, या फिर कैश प्राइज जीत गए हैं, या फिर आप कोई गेम खेल रहे थे वो जीत गए हैं, जैसे क्लॉ मशीन नहीं होती उसमें जीत गए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, सिंपल सा मतलब ये है कि आपके अंदर रिकग्निशन की डिज़ायर है, आपका माइंड में मतलब ये फीलिंग है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, तो इसका रिवॉर्ड कब मिलेगा, आपको रिवॉर्ड चाहिए। इसके अलावा एक अचीवमेंट का भी सिग्नल है कि आप कोई गोल अचीव करने, या फिर कॉम्पिटिशन जीतने, या फिर आप अपने आप को प्रूव करने की एक कोशिश कर रहे हो और आपकी सबकॉन्शियस फीलिंग माइंड में है। और अगर रिसेंटली पैसा, करियर, अर्निंग या फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे हो, तो उसका भी मतलब सिंपल यही है, वो चीज़ सपना बनकर, एक कैश प्राइज बनकर आपके सपने में आती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और एक और चीज़, अगर सपने में प्राइज जीतकर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या खुशी हो रही है ना, तो इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अचीवमेंट और वैलिडेशन की तरफ जाता है। अगर शॉक या डिसबिलीफ में थे आप लोग कि ये कैसे हो गया, तो हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और अगर इसके हम लोग देखें कि इसमें कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन भी दिखाई देता है क्या, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन शायद हो भी सकता है और शायद नहीं। हो सकता है फाइनेंशियल गेन हो जाए, हो सकता है रिकग्निशन मिल जाए, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आपके पास आने वाली हो, हो सकता है कॉम्पिटिशन में आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सपने को डिकोड करती है। और हाँ, एक और चीज़, लक भी हो सकता है, यानी कि आपका लक अब अच्छा जाने वाला है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी चीज़ पे पैसा लगा दो, आप शेयर मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे

पैसे लगा दो, आप शेयर मार्केट पे लॉटरी में पैसा लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना, आप लोगों को मेहनत करते जानी है और कंसिस्टेंट रहना है। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, चला रहा हूँ आप लोगों के लिए ये गाना।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आप लोग भी रेगुलर जिम जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग भी रेगुलर जिम जाते हैं तो आप लोगों को टाइम का एक हिसाब रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और जिम में टाइम का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये बताने के लिए मैं आ गया हूँ। रेडियो का गौरव AKA जिम ब्रो है आप सभी के साथ, और रोज शाम को इस टाइम हम लोग जिम टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में बात करें कि टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी वाइल यू आर डूइंग वर्कआउट। चाहे आप जिम जा रहे हैं, चाहे आप रनिंग करने जा रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं, या फिर आप योगा करते हैं, XYZ कुछ भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कुछ लोग ना जिम चले जाते हैं, वहाँ 1.5-2 घंटा बिता कर आते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं, खाना खाते हैं, रात को लेट तक फोन में लगे रहते हैं, सो ढंग से पाते नहीं है, रेस्ट मिलता नहीं है बॉडी को, और फिर नेक्स्ट डे फिर से जिम चले जाते हैं, फिर उनका यही रूटीन कंटिन्यू रहता है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको टाइम कैलकुलेट करके चलना है कि आपको कितना टाइम जिम में देना है, कितना टाइम आपको नींद लेनी है, कितना टाइम आपकी बॉडी एट रेस्ट होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वर्कआउट जब आप कर रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा कि एक सेट किया और फिर 5 मिनट बातें करने में लग गए, क्योंकि मैं तो अपने जिम में देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों को जो बस इधर से उधर बातें करते रहते हैं और डंबल इंतज़ार पर रखवा देते हैं, मतलब वेट अपने पास रख लेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं भाई साहब मैं कर रहा हूँ, और जैसे ही आप लोग डंबल उठाने जाएंगे फिर से आ जाएंगे, नहीं नहीं भाई साहब मैं कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद वो बात करने में फिर से लग जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी लाइक देम, अपना वर्कआउट कीजिए और टाइम मैनेज कीजिए, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि रोज शाम को इस टाइम जिम टिप लेकर आता हूँ जिम ब्रो बनकर। और अभी आप सभी के लिए चला रहा हूँ गाना, रेडियो महारानी 89.6 पर।

एक बात तो सच है कि हम लोगों को एक लंबे वीकेंड के बाद काम पर आने में इतनी ज्यादा थकान आती है, और MAUT भी तो आती है ना। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। देखो मैं ना पूरे वर्ड्स नहीं बोलूंगा क्योंकि नेगेटिविटी नहीं फैलाने आया मैं यहाँ पर, बट द रियल थिंग इज दिस कि आज शाम हो चुकी है बट ऐसा लग रहा है कि अभी भी काम नहीं करना है हम लोगों को। हमें चाहिए शांति शांति शांति। जिस सुकून को ढूंढने के लिए दिल्ली NCR के लोग यहाँ से उठकर पहुंच गए थे। कहाँ पर कहाँ गए थे याद है ना आप लोगों को? पहाड़ों पर। और वहाँ की वीडियोज देखने के बाद उन लोगों के मन में सुकून है जिन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। वो बोल रहे थे इतनी भीड़ में मैं तो नहीं जाता और मैं तो ना सहता, क्योंकि कैथी धाम हो या हो ऋषिकेश या हो मनाली या हो मसूरी या हो कसौल, हर जगह का यही सीन था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये सारी की सारी वीडियोज़ आई, उसके बाद कुछ खबर ऐसी भी आई कि ओवर प्राइस कर दिए गए थे सारी चीज़ें, जैसे कि होटल्स महंगे हो गए थे, रूम्स महंगे हो गए थे। जो कमरा आपको 800-1000 रुपये में मिल जाता वही कमरा आप लोगों को 2000-2500 2500 और करीब करीब 5000 भी दिए हैं लोगों ने, और कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में सो गए थे। तो ये तो था जी लंबे वीकेंड का हाल। और इसी के साथ साथ अब तो खैर क्या ही बोल सकते हैं, अब कोई लंबा वीकेंड अभी तो नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर एक गाना आ रहा है और मेरा हो गया जाने का यहाँ से टाइम, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। मिलूंगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 9, ठीक है? ये टाइम नोट कर लेना, कल शाम आऊँगा 5 से 9, खूब सारी बातें करेंगे। और हाँ, एक नंबर है मेरा, आप लोग ना उस पर मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। नंबर सिंपल सा है 9654896896, इसको याद कर लीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ, वापस आएगी गीत विदेश बाजियाँ, प्यार भरी बातें और प्यार भरे गाने लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप बोलना, आपको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: नहीं, क्यों?
0: तो फिर हम

ने के साथ स्वागत है। मैं हूं आपकी इश्क बाजिया की इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर आपका अपना शो इश्क बाजिया। और अब वक्त है उस हिस्से का जहां थोड़ी सी बात होगी मोहब्बत की, थोड़ी सी जिंदगी की और थोड़ी सी उन फीलिंग

याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ बड़ी बड़ी खुशियों का नाम नहीं है, कभी अच्छी कॉफी भी काफी है, कभी कोई फेवरेट गाना, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी किसी दोस्त का अचानक फोन, और कभी बस बालकनी में बैठकर ठंडी हवा को महसूस करना। लेकिन आज हम अपनी जेनरेशन में एक फनी सी चीज करते हैं, हमें खुशी चाहिए लेकिन वो भी थोड़ी स्पेशल इफेक्ट्स के साथ। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट सनसेट चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्ट करियर, परफेक्ट वीकेंड, और अगर ये सब एक साथ नहीं मिला तो लगता है लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ है। जबकि शायद खुशी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, शायद अक्टूबर की तरह ही है। थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा म्यूजिक और बस मूड बन गया। तो आज इस अक्टूबर में थोड़ा स्लो नहीं बल्कि थोड़ा मोर अलाइव होने की हम बात करेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी चीज है, हर दिन उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है यार। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा खूबसूरत सा सेगमेंट इश्क शायराना।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद गेम शो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगी लो दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
1: तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स, सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

0: वेलकम बैक, शो है इश्क बाजिया। मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आपने नोटिस किया है, हम हैप्पीनेस को भी प्रोजेक्ट बना देते हैं। मंडे को सोचते हैं फ्राइडे आएगा तो खुश होंगे, फ्राइडे को सोचते हैं वीकेंड आएगा तो खुश होंगे, वीकेंड पर सोचते हैं वेकेशन आएंगे तो खुश होंगे, वेकेशन में सोचेंगे काश रोज ऐसी लाइफ होती, और जब रोज ऐसी लाइफ नहीं होती तो वापस मंडे से शिकायत शुरू। मतलब हैप्पीनेस भी हमारी वेटिंग लिस्ट में पड़ी रहती है, और शायद इसी चक्कर में जो हमारे पास है हम उसका मजा नहीं लेते हैं। अक्टूबर की शाम को ही देख लीजिए, कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई लाइफ चेंजिंग अनाउंसमेंट नहीं आया, बस हवा थोड़ी अच्छी लगने लगी, सूरज थोड़ा जल्दी नरम हुआ और सड़क किनारे पेड़ों से कुछ पत्ते गिरे, लेकिन सीन पूरा सिनेमैटिक हो गया। शायद हमें भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा सिनेमैटिक होना चाहिए। बिना किसी रीजन के अच्छे कपड़े पहन लेना, अकेले कॉफी पीने निकल जाना, अपने पसंदीदा गाने पर फुल वॉल्यूम में गाना, किसी दोस्त को अचानक कॉल करके कहना चल आज मिलते हैं, क्योंकि हर खुशी के पीछे कोई बड़ी वजह हो ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी आज मन किया भी एक परफेक्टली गुड रीजन है, और आज की जनरेशन को शायद ये परमिशन खुद को देनी चाहिए कि हर चीज प्रोडक्टिव होनी जरूरी नहीं, हर दिन सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं, हर मोमेंट इंस्टाग्राम वर्दी होना जरूरी नहीं। कुछ मोमेंट सिर्फ हमारे लिए होते हैं, और शायद वही सबसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। मैं हूं गीत, और अक्टूबर की इस खूबसूरत शाम में एक और खूबसूरत सा एहसास लेकर ये गाना सुनते हैं।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिंस एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर

चीज बहुत प्यारी सी लगती है। ये महीना आपको थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक बना देता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और ये है इश्क बाजियां। अब ये रोमांस सिर्फ किसी इंसान के साथ होना जरूरी नहीं, कभी अपने शहर से प्यार हो जाता है, कभी शाम के आसमान से, कभी किसी पुराने गाने से, कभी सड़क किनारे लगी छोटी सी चाय की दुकान से भी, और कभी कभी बस अपने आप से। हम इतने बिजी हो गए हैं ना कि अपने साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। फोन हाथ में है, ईयरफोन्स कान में है, कुछ ना कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। दो मिनट खाली बैठो, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है, लेकिन कभी अक्टूबर की हवा में फोन थोड़ा नीचे रख कर देखिए, शायद आपको पता चले कि आसपास कितनी सारी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। किसी पेड़ पर नई कोपल, किसी घर की बैल्कनी पर रखे पौधे पर फूल, सड़क पर शाम की रोशनी, किसी के हाथ में गर्म चाय। और फिर शायद आप सोचें, यार लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, मैं बस इसे देख नहीं पा रही हूँ। हमें हर समय कुछ हासिल करने की जल्दी रहती है, लेकिन कुछ पल सिर्फ महसूस करने के लिए भी होते हैं। तो इस अक्टूबर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, बस कहीं जाइए, अपना पसंदीदा गाना लगाइए, कुछ अच्छा खाइए और बिना किसी गिल्ट के एंजॉय कीजिए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, कभी कभी इसे थोड़ा सा फील भी करना पड़ता है। मैं हूँ इश्क बाजियां के गीत और आप सुन रहे हैं इश्क शायराना रेडियो महारानी पर।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्ट्रेस स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और अक्टूबर से मेरी सबसे फेवरेट बात पता है क्या है? ये महीना हमें कोई बड़ी स्पीच नहीं देता, बस मौसम बदल देता है। हवा बदलती है, सुबह बदलती है, शामों का रंग बदलता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन मूड हमारा थोड़ा थोड़ा बदल ही जाता है। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, हर चीज को ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं, बस कभी कभी अपना रूटीन बदल कर देखिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, किसी दिन रास्ता बदल कर जाइए, नया गाना सुनिए, किसी ऐसे दोस्त को कॉल कीजिए जिससे महीनों से बात नहीं हुई है, किसी नए कैफे में बैठकर कॉफी पीजिए। छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी चीजें तो दिन को दिन बनाती हैं। और शायद यही अक्टूबर का सीक्रेट है। नई शुरुआत हमेशा जनवरी की पहली तारीख को नहीं होती, कभी वो अक्टूबर की किसी शाम को भी हो सकती है, किसी रैंडम डिसीजन से, किसी अचानक निकली ड्राइव से, किसी नए गाने से, किसी नए आइडिया से, या बस इस थॉट से कि चलो आज थोड़ा अपने तरीके से जीते हैं। तो अगर अक्टूबर की हवा आज आपके शहर में भी थोड़ी बदल गई है तो उसे सिर्फ महसूस मत कीजिए, उसके साथ अपना मूड भी बदल दीजिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा गाइए, थोड़ा प्यार कीजिए। और सबसे जरूरी, खुश रहने के लिए हमेशा कोई बड़ी वजह मत ढूंढिए, क्योंकि कई बार एक अच्छी शाम, एक अच्छा गाना और आपके अपने फेवरेट इंसान से दो बातें, बस इतनी सी चीजों में भी पूरी कहानी बदल जाती है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये था शायराना। अक्टूबर अभी अभी नया है तो देखते रहिए, हो सकता है इस महीने आपकी जिंदगी भी कोई खूबसूरत सा नया सीन आपको दिखा दे। तो अब इस सीन में थोड़ा सा म्यूजिक ऐड करते हैं। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और ये था इश्क शायराना।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्ट्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियाँ यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की

दी हो गई। लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियाँ बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे, रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ

फिर से स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानी अभी बाकी है।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर।

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती। स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

तो ये थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी, धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से न जाए। किसी पुराने कागज को खोलो तो उसकी लिखावट में उसकी आवाज सुनाई दे, कोई पुराना गाना बजे तो वो इंसान अचानक आपके पास बैठा हुआ लगे, यही है रेट्रो इश्क, पुराने वक्त की कहानी लेकिन एहसास बिल्कुल आज का। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब इस कहानी को एक खूबसूरत धुन के साथ विदा करते हैं, कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, संभाल कर रखी जाती है, और ये कहानी उन्हीं में से एक थी। स्टे ट्यून्ड, अगली

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिस्से

रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद बढ़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है। कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: वो सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्री हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहि तो सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशा, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान की रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कहे मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, इस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम।

चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, मां प्रभु हरिवंश गुरु है। गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा, वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है निकल जाओ, आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक, और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके, काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव, कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है, बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा इस सहयोग किया।